丹神后只需了300年，大米尔奈杜邦有3万多座寺庙，使得该邦获得别具特色的称号"寺庙之国"，名胜古迹遍布全邦。

印度德里广播电台，现在我们播送古拉玛里和阿沙波斯里唱的歌曲，请收听。

0: प्रिय, किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी।
1: नारायण।

0: नारायण, क्यों बैठी हो खोई खोई? मेरे योग्य है सेवा कोई?
1: भरे नहीं अभी खाओ पुराने, फिर आए हो आग लगाने।
0: मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो।
1: कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए।
0: अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी?
1: वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचा। निस दिन देखूं जिनके सपने खो बैठूं वो प्रीतम अपने।
0: तुम नहीं समझे कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना, मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना।
1: बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीते रुक्मिणी हारी।
0: परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना?
1: वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं।
0: नारायण नारायण।

0: कुछ धोखा है राम दुहाई, इतनी भारी नहीं कन्हाई।
1: ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है।
0: मेरे पास जो था ले आई, दे दू मुझको कृष्ण कन्हाई।
1: दे दू लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचूं, दासों के बाजार में बेचूं। लो ये तंबूरा बंसी बजाइया, पकड़ो ये करताल कन्हैया। भामा
0: स्वामी।
1: कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी।
0: नीलामी

0: अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए।
1: भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहां विरहा की मारी।
0: रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो।
1: रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है।

पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने श्री राम अवतार की कथा सुनाते हुए ब्रह्म के निर्गुण तथा सगुण रूपों की व्याख्या की।

जो निर्गुण अर्थात अरूप अव्यक्त और अर्जन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जिस प्रकार जल और ओले में कोई भेद नहीं, दोनों जल के ही रूप हैं, उसी प्रकार सगुण और निर्गुण भी तत्वतः एक ही हैं। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझ पाने में असमर्थ होता है, इसी कारण वो प्रकाश पुंज पुराण पुरुष श्री रामचंद्र पर एक मानव की ही भांति मोह के आवरण में लिपटे होने का आरोप लगाता है।

0: इसी के साथ रामचरितमानस यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:55 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। भारतीय जनता पार्टीति दलेन पश्चिम बंगाल राज्ये 94-200 सदस्यीय राज्य विधानसभायां प्रचंडं जनादेशं प्राप्य इतिहासः विनिर्मितः। अनेन स्वाधीनतानन्तरं प्रथमवारं पश्चिम बंगाल राज्ये भाजपा दलं बहुमतेन सत्तायाम् आगतमस्ति। असम राज्ये सत्ताधारी भाजपा नेतृत्वयुक्तेन एनडीए दलेन पुनरेकवारं जनादेशं प्राप्य तृतीयवारं सत्तायाम् आगम्यते, यत्र हि

0: भाजपादलेन त्रिसप्ततिः आसनानि विजितानि। केरलं राज्ये कांग्रेस नेतृत्वेन यूडीएफ इति संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधनेन ऊनशतम् आसनेषु विजयं प्राप्य निर्णायकरूपेण सत्तां प्रति प्रत्यागमनस्य संकेतः प्रदत्तः, यत्र च कांग्रेस दलेन त्रिषष्टिः आसनानि विजितानि। पुदुचेरीत्यत्र राष्ट्रिय प्रजातांत्रिक घटबंधनेन एनडीए इत्यनेन त्रिंशत् आसनेषु अष्टादश आसनानि विजित्य सर्वकारं रचयितुं स्पष्ट बहुमतं प्राप्तमस्ति। पश्चिम बंगाल राज्ये भवानीपुर विधानसभा क्षेत्रे भाजपा प्रत्याशी सुवेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्रीं टीएमसी नेत्रीं ममता बैनर्जीं 15,000 मतैः पराजितवान्। निर्वाचन सूची विशेष सघन पुनरीक्षणस्य एसआईआर इत्यस्य अनन्तरं प्रथम निर्वाचने ममता बैनर्जी नेतृत्वेन तृणमूल कांग्रेस इत्यस्य 15 वर्षीयं शासनं समाप्तं कृत्वा भाजपा दलेन बहुमतं प्राप्तमस्ति। पश्चिम बंगाल राज्ये भाजपा दलेन 60+, तृणमूल कांग्रेस दलेन 80 आसनानि च विजितानि। अभिनेता परिवर्तित राजनेता च चंद्रशेखरन जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलग वेत्री खजगम टीवीके इति दलेन तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचने एकैक बृहत्तम दलरूपेण उद्भवन इतिहास विनिर्मित। राज्ये 34+200 निर्वाचन क्षेत्रेषु टीवीके दलेन 80 आसनानि प्राप्तानि। भाजपा दलस्य वरिष्ठ नेत्रा अथ प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना ऐतिहासिकः अभूतपूर्वः दिवसोऽयमिति उक्त्वा पश्चिम बंगाल असम पुदुचेरी तमिलनाडु केरलम राज्यानां जनानां दलकार्यकर्तॄणां च प्रति आभारः प्रकटितः। ह्यः नवदिल्ल्यां भाजपा मुख्यालये दलकार्यकर्तॄन् सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् अयं राष्ट्रस्य कृते नूतन प्रभातस्य सूचकः अस्ति, तथा च जनाः भारतस्य महालोकतन्त्रे कार्यप्रदर्शनस्य राजनीतिषु एकभारत श्रेष्ठ भारतस्य भावनायाञ्च विश्वासं स्थापितवन्तः।
1: पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना उक्तं यत् देशस्य 20+ राज्येषु भाजपा एनडीए सर्वकाराः सत्तायां सन्ति, तथा च भाजपायाः मन्त्रः जनता एव जनार्दनः इति। भाजपादलेन पुदुचेरीत्यत्र विधानसभायाः नेतारं निर्वाचयितुं दलस्य वरिष्ठनेता एवं केन्द्रीयमन्त्री डॉ मनसुख मांडविया एवं पुदुचेरीत्यत्र दलस्य प्रभारी निर्मलकुमार सुराना च केन्द्रीय पर्यवेक्षकरूपेण चितवन्तौ। नामद्वयमपि भाजपा संसदीयमण्डलस्य केन्द्रीय पर्यवेक्षकमण्डलेन अनुमोदितमासीत्। आईपीएल इति 20 प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां मुंबई नगरस्य वानखेड़े क्रीडांगणे गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 6 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 दिल्ली कैपिटल्स अथ चेन्नई सुपर किंग्स दलयोर्मध्ये दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धा निश्चिता वर्तते इति वार्ताः।

0: Para pemirsa yang terhormat, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email kami. Harap dicatat email kami sebagai berikut: air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih banyak. Saudara pendengar, laporan mengenai daya penangkapan kami, siaran kami di daerah Anda sangatlah membantu kami meningkatkan mutu siaran kami ini. Sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami
1: Namaskar. आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुद्दुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार, केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत, तमिलनाडु में टीवी के 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने प्रदर्शन की राजनीति पर भरोसा जताया। ईरान के ड्रोन हमले में संयुक्त अरब अमीरात में 3 भारतीय नागरिक घायल और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया।

0: अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड़ पर आ चुकी है। पहले ही बताया गया था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा के क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ने 47 सीटें जीती। इससे जुड़ी और जानकारी हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय ने सुपरहिट एंट्री ली और उनकी पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। थलाइवा, जननायकन, मरसल, सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के नायक रहे जोसेफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असल जीवन में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके सामने राज्य के मतदाताओं के सपनों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। 51 साल के अभिनेता को आज उनकी पार्टी के विधायकों द्वारा नेता चुने जाने की संभावना है। पार्टी गठबंधन सरकार के गठन को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और विजय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार बनाने और उसे बेहतर ढंग से चलाने की होगी, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भाजपा को 82 सीटें मिली, जबकि उसके सहयोगी असम गण परिषद एजीपी ने 9 सीटें और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती। दूसरी ओर कांग्रेस को 19 सीटें, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल को 2-2 सीटें और टीएमसी को 1 सीट मिली। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतकर गठबंधन को पूरे राज्य में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। राज्यभर में लगभग सभी प्रमुख यूडीएफ नेता स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हुए। सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ से सीपीआईएम ने 26, सीपीआई ने 8 और आरजेडी ने 1 सीट हासिल की। विधानसभा में एक भी सीट न होने के बावजूद भाजपा ने इस बार 3 सीटें अपने नाम की। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। इसके घटक दलों में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 12 सीटें, भाजपा ने 4 सीटें जीती, जबकि अन्य सहयोगी दलों अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम और एलजेके ने 1-1 सीट हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।
3: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की

0: जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
1: देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही।
0: श्री मोदी ने कहा कि भाजपा का मंत्र है नागरिक ही भगवान है और पार्टी जनता की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि देश में एक नया सवेरा हुआ है और जनता ने भारत के महान लोकतंत्र, प्रदर्शन की राजनीति और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की जनता को भाजपा और एनडीए पर अपना समर्थन और विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में पार्टी की जीत का स्वागत किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जीत को भय, तुष्टीकरण और घुसपैठियों को पनाह देने वालों के खिलाफ जनता की करारी प्रतिक्रिया बताया। श्री शाह ने असम की जनता को ऐतिहासिक हैट्रिक जनादेश के लिए बधाई दी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार द्वारा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील राज्य के निर्माण के लिए किए गए अथक प्रयासों का सशक्त समर्थन बताया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के बीच साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल पर्यटन, खेल, मनोरंजन और बहुपक्षीय मुद्दों में संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में एलपीजी वितरकों के यहां आपूर्ति की कोई कमी नहीं हुई है और पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। कल दोपहर नई दिल्ली में हुई अंतर मंत्रालयी बैठक में अधिकारियों ने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करने और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में प्रमुख अधिकारियों और मुख्य वार्ताकारों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत से निर्यात करने के लिए अधिक व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद कल फुजेराह तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सोमवार के हमलों ने 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद से हफ्तों से बनी शांति को भंग कर दिया। ईरान ने इस कदम को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि जलमार्ग में प्रवेश करने वाली प्रत्येक जहाज पर हमला किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया, जिससे फुजेराह में एक प्रमुख तेल संयंत्र में आग लग गई। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि ईरान के संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाने की कोई योजना नहीं है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इन हमलों को हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि ये देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फुजेराह पर ड्रोन हमलों की खबरें ऐसे समय में सामने आई जब अमरीका और तेहरान के बीच युद्ध विराम वार्ता ठप पड़ी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमरीका और ईरान के बीच नई चेतावनियों और सैन्य कार्रवाइयों के दावों के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमरीका के जहाजों को निशाना बनाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

0: लक्ष्य हासिल कर लिया। रॉयल रिकेल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गांगेय पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों के कुछ हिस्सों में दिन के समय गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीष शर्मा।
1: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम बंगाल में भाजपा की रिकॉर्ड जीत, ये आज सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी है। असम, पुदुचेरी में एनडीए गठबंधन के सर सत्ता का ताज सजने, तमिलनाडु में टीवीके के धमाल और केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत को भी मुख्य अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, छा गए बाबू मोशाय। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, बाबू मोदी शाय। तमिलनाडु में टीवीके की लहर को प्रकाशित करते हुए हिन्दुस्तान ने सुर्खी दी है, विजय की सुनामी में सियासी दिग्गज साफ। केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत पर पंजाब केसरी लिखता है, केरलम में कांग्रेस को सत्ता, सीएम पिनराई का इस्तीफा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही भाजपा की जीत पर नवभारत टाइम्स ने जीत के नायक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, असम में सत्ता की हैट्रिक। भाजपा के पक्ष में आए भारी जनादेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, बदला लेने के बजाय बदलाव के लिए करें काम को भी ज्यादातर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान ने जनादेश का संदेश शीर्षक से संपादकीय में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथों सत्ता फिसलने का विश्लेषण करते हुए लिखा है, अव्वल तो एसआईआर की जरूरत से ज्यादा आलोचना तृणमूल को भारी पड़ी। दरअसल इससे संदेश गया कि पार्टी संदिग्ध वोटरों को बचाना चाहती है। होर्मुज जल क्षेत्र पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम से बढ़ता तनाव भी मुख्य समाचार पत्रों की सुर्खी बना हुआ है। और आंधी बारिश ने दिल्ली को दिलाई सबसे साफ हवा, 88 रहा AQI, मौसम के मिजाज पर ये है नवभारत टाइम्स के शब्द।
0: धन्यवाद मुनीष। और अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार, केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन की जीत, तमिलनाडु में TVK 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने सुशासन की राजनीति पर भरोसा जताया। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक निकायों और व्यापार संघों ने भाजपा की जीत का स्वागत किया। और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। BJP set to form government in West Bengal and Assam. NDA retains Puducherry. Congress-led UDF comes to power in Keralam. Hung Assembly in Tamil Nadu. TVK emerges as largest party with 108 seats. Prime Minister Narendra Modi says people have placed trust in politics of performance. West Bengal's industry bodies and trade associations hail BJP's victory. 3 Indians injured in UAE in drone attack by Iran. And in IPL cricket, Mumbai Indians beat Lucknow Super Giants by 6 wickets. And now the news in detail. History has been created in the assembly elections in West Bengal and Tamil Nadu. While the Bharatiya Janata Party has secured overwhelming mandate in West Bengal and set to form government in the state for the first time, debutant Tamilaga Vetri Kadagam, or TVK, has emerged as the largest party in Tamil Nadu. In other assembly elections, Assam and Puducherry have re-elected its outgoing governments, while the Congress-led UDF has come to power in Keralam. In West Bengal, the BJP has won 200.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल और आसाम में बीजेपी नई सरकार बनाने के लिए तैयार है। पुदुचेरी में भी एनडीए ने अपना इख्तदार बरकरार रखा है। केरलम में कांग्रेस के जेर कयादत यूडीएफ फिर से इख्तदार में आ गया है, जबकि तमिलनाडु में किसी भी पार्टी को वाजे अक्सरियत नहीं मिली है। टीवीके पार्टी 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अवाम ने कारकर्दगी की सियासत में अपने एतमाद का इजहार किया है। मगरबी बंगाल के सनती इदारों और तिजारती अंजुमनों ने बीजेपी की कामयाबी का खैर मकदम किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में ईरान के ड्रोन हमले में 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात में 2 महाजों पर तारीख रकम हुई है। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने पहली मर्तबा जबरदस्त अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में पहली बार चुनाव लड़ने वाली

0: दीघा वैतरी कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इधर दीगर असेंबली इंतखाबात में आसाम और पुदुचेरी में अवाम ने फिर से हुक्मरान पार्टियों में एतमाद का इजहार किया है, जबकि केरलम में लोगों ने तब्दीली के हक में राय जाहिर की है। मगरबी बंगाल में बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर असेंबली में दो तिहाई से ज्यादा अक्सरियत हासिल की है। इस तरह तृणमूल कांग्रेस का 15 साल से जारी दौरे हुकूमत खत्म हो गया है। तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली हैं, जबकि एक सीट पर उसे सबकत हासिल है। 293 असेंबली सीटों में से 292 हलकों के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस और आम जनता उन्नयन पार्टी को दो दो सीटें मिली हैं, जबकि सीपीआईएम एक सीट पर कामयाब हुई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मगरबी बंगाल में बीजेपी ने तकरीबन 45.84% वोटों के साथ 206 सीटें जीती हैं। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस का वोट तकरीबन 8% कम होकर 40.8% रह गया, जबकि उसने 2021 के इंतखाबात में 48.5% वोट हासिल किए थे। तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े रहनुमाओं को हार का सामना करना पड़ा है। इस इलेक्शन में बीजेपी ने न सिर्फ शिमाली बंगाल में बड़ी कामयाबी हासिल की, बल्कि तकरीबन पूरे जनूबी बंगाल में भी अपनी मजबूत गिरफ्त बना ली। ममता बनर्जी को अपने भवानीपुर हलके में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया। अधिकारी ने नंदीग्राम सीट भी जीती है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की पार्टी तमिलगा वैतरी कड़गम टीवी के ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। पार्टी की तश्कील के बाद पहले चुनाव में टीवी के ने 108 सीटें जीती हैं और वो वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के सरबराह जोसफ विजय पिरम्बूर और तिरुची ईस्ट दोनों हलकों से चुनाव जीत गए हैं। 234 रुकनी असेंबली में हुक्मरान डीएमके पार्टी को 59 सीटें मिली हैं, जबकि उसकी हरीफ पार्टी ऑल इंडिया अन्ना डीएमके 47 सीटों पर कामयाब हुई है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि टीवी के पार्टी के सरबराह जोसफ विजय जल्द ही तमिलनाडु के नए वजीर आला की जिम्मेदारी संभालेंगे। टीवी के पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं, जो सरकार बनाने की खातिर अक्सरियत के लिए दरकार 10 सीटें कम हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय का सुपरहिट आगाज हुआ है और उनकी पार्टी रियासत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। थलाइवा, जननायकन, मरसल और सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के हीरो रहे जोसफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में वजीर आला का रोल निभाने जा रहे हैं और उनके सामने वोटरों के ख्वाब पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। 51 साल के विजय को आज उनकी पार्टी के एमएलए अपना रहनुमा चुन सकते हैं। पार्टी मखलूत इत्तेहाद की सरकार बनाने को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए है और विजय के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज सरकार बनाने और उसे बेहतर तरीके से चलाने का होगा, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। खबरनामे के लिए चेन्नई से सुशील चंद्र तिवारी।
0: आसाम में हुक्मरान बीजेपी के जेर कयादत एनडीए ने 126 रुकनी असेंबली में 82 सीटें जीतकर लगातार तीसरी मुद्दत के लिए तारीखी कामयाबी हासिल की है। पार्टी की इत्तेहादी आसाम गण परिषद को 9 सीटें मिली हैं, जबकि बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं, जबकि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल ने दो दो सीटें जीती हैं। तृणमूल कांग्रेस को एक सीट मिली है। केरलम में कांग्रेस की जेर कयादत यूडीएफ ने फैसलाकुन कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि उसकी इत्तेहादी पार्टी आईयूएमएल को 22 सीटें मिली हैं। इस तरह इस इत्तेहाद को रियासत में बालादस्ती हासिल हो गई है। यूडीएफ के करीब करीब सभी सरकर्दा रहनुमा वाज़ह अक्सरियत से मुंतखब हो गए हैं। इधर हुक्मरान एलडीएफ की तरफ से सीपीआईएम को 26, सीपीआई को 8 और आरजेडी को एक सीट मिली है। बीजेपी को इस मरतबा 3 सीटें मिली हैं, जबकि अभी तक असेंबली में पार्टी की कोई नुमाइंदगी नहीं थी। पार्टी के रियासती सदर राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम में नेमम हल्के से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। पुदुचेरी में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने 30 रुकनी ऐवान में 18 सीटें जीतकर वाज़े अक्सरियत हासिल की है और इख्तदार बरकरार रखा है। इत्तेहादी पार्टियों में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 12 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी को 4 सीटें मिली हैं। कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीतने में कामयाब हुई है, जबकि 3 सीटें आजाद उम्मीदवारों के हक में गई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी को तारीखी और बेमिसाल करार दिया है। जनाब मोदी ने मगरबी बंगाल, आसाम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के अवाम

0: पार्टी कारकुनों के तय तशक्कुर का इजहार किया है। चुनाव नतीजों के बाद कल शाम दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि बीजेपी एनडीए की सरकारें 20 से ज्यादा रियासतों में इकतदार में हैं। जनाब मोदी ने कहा कि बीजेपी का मंत्र है अवाम भगवान है और पार्टी अवाम की खिदमत के लिए वक्फ है। उन्होंने कहा कि इसीलिए लोग पार्टी में और ज्यादा एतमाद का इजहार कर रहे हैं।
1: जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के लिए एक नई सुबह का आगाज हुआ है और अवाम ने मुल्क की अजीम जमहूरियत और कारकर्दगी की सियासत में अपने एतमाद का इजहार किया है।
1: ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: इधर बीजेपी के सदर नितिन नवीन ने भी बीजेपी और एनडीए में फिर से अपने एतमाद का इजहार करने पर चारों रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके के अवाम के तहत तशक्कुर का इजहार किया। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल, आसाम और पुदुचेरी में पार्टी की कामयाबी का खैर मकदम किया है। जनाब अमित शाह ने मगरबी बंगाल में पार्टी की जीत को डर, खौफ, खुशनूदी और दरअंदाजों को पनाह देने वालों के खिलाफ अवाम के जवाब से ताबीर किया। उन्होंने लगातार तीसरी बार पार्टी में एतमाद का इजहार करने पर आसाम के लोगों को मुबारकबाद दी। मगरबी बंगाल के सनती इदारों और तजारती अंजुमनों ने बीजेपी की शानदार कामयाबी का खैर मकदम किया है। कारोबारी रहनुमाओं ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार रियासत की मईशत में नई जान डालने के लिए सनतकारी बुनियादी ढांचे के फरोग और सरमायाकारों के लिए साजगार पॉलिसियों के एक नए दौर का आगाज करेगी। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में ईरान से किए गए एक ड्रोन हमले के बाद जबरदस्त आग लग गई। पिछले महीने नाफिज की गई जंगबंदी के बाद से मुत्तहिदा अरब इमारात के इलाके में यह इस तरह का पहला हमला है, जिससे काफी नुकसान हुआ। वहां के हुकाम ने यह जानकारी दी है। मालूम हुआ है कि इस वाकये में 3 भारतीय शहरियों को कुछ जख्म आए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अबूजबी में भारतीय सिफारतखाने ने बताया है कि वो मुतासर अफराद की खैर आफियत को यकीनी बनाने के लिए मकामी हुकाम के साथ राबता कायम किए हुए है। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत दिफा ने इस बात की तस्दीक की है कि कल वहां आने वाले 4 ड्रोन और 3 क्रूज मिजाइलों का पता लगाया गया और उन्हें बीच में ही मार गिराया गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: कल के हमलों से अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद से कायम निस्बतन पुरसकून माहौल का सिलसिला टूट गया है। 8 अप्रैल को ये जंगबंदी नाफिज हुई थी। अमरीका के सदर ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि अमरीकी फोर्सेज आबनाए हुरमुज से फंसे हुए कमर्शियल बहरी जहाजों को बहिफाजत बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू करेगा, जिसे ईरान ने मुस्तरद कर दिया और कशीदगी में इजाफा हो गया है। ईरान ने यह वार्निंग दी है कि इस आबी गुजरगाह में दाखिल होने वाले गैर मुल्की फौजी फोर्सेज पर हमला किया जाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: वजीर खारजा डॉक्टर एस जे शंकर ने जमैका के अपने हम मनसब कामिना जॉनसन और उनकी काबीना के दीगर वजरा के साथ एक मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस मीटिंग के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के दरमियान शराकत दारी के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। उन्होंने तालीम, सेहत, जरात, डिजिटल सियाहत, खेल, तफरी, बुनियादी ढांचे, सलाहियत साजी और कसीर जहती उमूर के सिलसिले में ताल्लुकात को आगे ले जाने के बारे में तबादले ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने जमैका के सनती और कारोबारी रहनुमाओं के साथ बातचीत भी की।

0: उत्तर प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो रियासत में पीने के पानी की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाए। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हर जिले के लिए 1 करोड़ रुपए की रकम जारी करने की हिदायत दी ताकि पानी की फराहमी के निजाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। कल सेक्रेटरीट में एक जायजा मीटिंग के दौरान जनाब नायडू ने गाड़ियों के इंदराज के अमल को आसान बनाने के लिए इकदाम को भी मंजूरी दी। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मुल्क के कई हिस्सों में तेज बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयाई खित्ते और सिक्किम के साथ साथ तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी शदीद बारिश होने का इम्कान है। इधर शिमाली रियासतों के बाद हिस्सों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई भी की गई है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से दिए गए 229 रन के निशाने को मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर्स और 4 गेंदों में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 228 रन बनाए थे। रयान रिकल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी अखबारात ने 5 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात के नतायज से मुतालिक खबर को अपनी शहसुर्खी बनाया है। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस सिलसिले में शहसुर्खी है, बंगाल में बीजेपी की तारीखी जीत, आसाम में भी वापसी। अखबार प्रताप की सुर्खी है, बंगाल, तमिलनाडु और केरला में इकतदार के किले ढह गए। अखबारात ने नई दिल्ली में बीजेपी के सदर दफ्तर में वजीर आजम के कारकुनों से खिताब को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, बंगाल की जीत के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल की हुक्मरानी। अखबारात ने भारत और कनाडा के दरमियान एफटीए मुजाकरात का दूसरा दौर शुरू होने की खबर को भी अहमियत दी है। तकनीकी दौर में मुस्तकबिल के लिए तहकीक और सरप्राइज इंतहाई जरूरी, अखबारात ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को कौमी सफे पर जगह दी है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल और आसाम में बीजेपी नई सरकार बनाने के लिए तैयार है। पुदुचेरी में भी एनडीए ने अपना इकतदार बरकरार रखा है। केरलम में कांग्रेस के जेर क्यादत यूडीएफ फिर से इकतदार में आ गया है, जबकि तमिलनाडु में किसी भी पार्टी को वाजह अक्सरियत नहीं मिली है। टीवीके पार्टी 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अवाम ने कारकर्दगी की सियासत में अपने एतमाद का इजहार किया है। मगरबी बंगाल के सनती इदारों और तजारती अंजुमनों ने बीजेपी की कामयाबी का खैर मकदम किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में ईरान के ड्रोन हमलों में 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के ठीक 8:45 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज आप सुनेंगे विश्वजीत रॉय चौधरी द्वारा सरोद पर बजाया राग राग अल्हैया बिलावल। विलंबित रचना तीन ताल एवं द्रुत तीन ताल में निबद्ध है।

इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा यहीं संपन्न होता है। इसके अंतर्गत अभी आप आनंद उठा रहे थे विश्वजीत रॉय चौधरी द्वारा सरोद पर बजाया राग अलहिया बिलावल का। विलंबित रचना तीन ताल एवं द्रुत तीन ताल में निबद्ध थी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के ठीक 9:15 होने को है। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

0: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में परिवर्तन हो रहा है। मार्च महीने में ही हम लोगों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश के अन्य भागों में भी इसका अनुभव किया है। विस्तृत जानकारी के लिए आइए सुनते हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विवेक सिंह से कमल किशोर बड़ाई की ये बातचीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कमल किशोर बड़ाई का नमस्कार। साथियों, जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के औसत तापमान और मौसम के पैटर्न में दशकों से या सदियों से होता चला आ रहा है और यह दीर्घकालिक बदलाव भी है, जिसका मुख्य कारण हो सकता है कि जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला, गैस, तेल, इनके जलने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ये मानवीय गतिविधियां तापमान वृद्धि, ग्लेशियर के पिघलने, समुद्र स्तर में वृद्धि और सूखा बाढ़ जैसी चरम घटनाओं के कारण यानी कि अति ज्यादा घटनाओं के कारण हो रही है। आज इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं विज्ञान प्रसार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विवेक सिंह जी को। डॉक्टर विवेक सिंह जी, आपका हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार सर, धन्यवाद।
0: डॉक्टर विवेक सिंह जी, जब भी कुछ बात होती है, जब भी कहीं गर्मी होती है, जब भी कहीं ज्यादा बारिश हो जाती है, बाढ़ के हालात हो जाते हैं या फिर ग्लेशियर पिघलने की बात होती है, तो हम कहते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो सकते हैं,
1: ये बताना चाहूंगा कि मौसम और जो क्लाइमेट है उनमें फर्क क्या होता है। मौसम आप किसी भी एक नियत स्थान की जो डेली के टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो वेदर पैटर्न चेंजेस होते हैं उनको हम लोग मौसम बोलते हैं। और क्लाइमेट जो वर्ड है, जो शब्द है, वो किसी भी जगह की पिछले लगभग 30 साल की जो जैसी मौसम की घटनाएं थी उनका जो एवरेज निकालते हैं हम लोग उनके वहां का क्लाइमेट बोलते हैं
0: जी।
1: तो अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज

0: बारे में बात करेंगे, जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी जगह का तापमान, जो औसत पिछले 30 साल का तापमान था, उसमें से अब कितना चेंजेस घट रहा है, कोई चीज बढ़ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज।
1: जगह जगह पर कुछ अलग हो सकता है क्या?
0: हाँ बिल्कुल, अलग से होता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज कई कारणों से होता है। एक तो कई प्राकृतिक कारण भी होते हैं, प्राकृतिक कारण जैसे कि ग्लेशियर्स का पिघलना हो गया, मानव जनित जो कारण है उसमें अगर हम लोग ध्यान देंगे तो जैसे मानव बहुत ही ज्यादा वनों की कटाई करते हैं और बहुत ही ज्यादा जीवाश्म ईंधन का गाड़ियां चलती हैं, ये जो मानव जनित कारण है ये भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कई बार, और ये पोर्शन ज्यादा है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन का,
1: जी
0: और
1: जी
0: प्राकृतिक कारणों से कम होता है थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज।
1: जहां तक जीवाश्म ईंधन का जो दहन होता है, जलता है, उसमें कौन कौन सी ऐसी गैसें होती हैं?
0: देखिए जो उसमें कई हानिकारक गैसेस निकलती हैं, तो नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, तो ये गैसें जब भी हमारे तापमान में उत्सर्जित होती हैं तो ये ग्रीन हाउस गैस नामक एक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है कि जो पृथ्वी के सतह से लगभग 10 किलोमीटर की हाइट तक जो ट्रोपोस्फियर, हम लोग पृथ्वी का एक मंडल होता है उसको हम लोग ट्रोपोस्फियर बोलते
1: ट्रोपोस्फियर,
0: हैं,
1: जी
0: तो ये गैसेज उसमें ट्रैप हो जाती हैं, तो ट्रैप होने की वजह से जो इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन रहेगा, सनलाइट हम अर्थ पे गिरती है और वापस कुछ पोर्शन चली जाती है, सनलाइट वापस कई बार नहीं जा पाती है, इन गैसेस की वजह से ट्रैप हो जाती है,
1: जी
0: इसकी वजह से तापमान बढ़ने लगता है, इसी प्रभाव को हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं।
1: तो जैसे जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव ज्यादा बढ़ते रहता है, तो क्यों उसी प्रकार से क्या अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं उनका भी प्रभाव हमारे पास, यानी कि हमारे पृथ्वी पर ज्यादा पड़ता है?
0: हाँ कह सकते हैं, अल्ट्रावायलेट का तो डायरेक्टली जो प्रभाव होता है तो ओजोन परत के डिपेंड करता है
1: डिपेंड करता है।
0: कि जब भी हमारा अगर वो ओजोन जो लेयर है अगर वो डिप्लीट रहेगी तो अल्ट्रावायलेट सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पर ज्यादा आएंगी और वो विभिन्न प्रकार की रोगों को उत्पन्न कर सकती है, जैसे खासतौर पर स्किन कैंसर। तो जब हमारा वातावरण बहुत ही प्रदूषित है तो उससे क्या होता है कि कई बार ओजोन की जो परत है उसमें भी काफी मतलब गिरावट आती है, उसकी क्षय होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जो हमारा जो ट्रोपोस्फियर है या जो अर्थ सर्फेस है वो डायरेक्टली एक्सपोज हो जाता है सन के लिए, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो उनके आने के चांसेस और प्रायिकता ज्यादा रहती है और इसके वजह से स्वास्थ्य संबंधी और समस्याएं भी हो सकती
1: जी
0: हैं।
1: डॉक्टर विवेक सिंह जी, अभी आपने कहा कि एयर पोल्यूशन, और मुझे लगता है कि आप एयर पोल्यूशन से आप ज्यादा करीब से जुड़े हुए हैं, यानी कि आप उसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं, उनके विषय में आर्टिकल्स आप लिखते भी हैं, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे कि ये हमारे जलवायु परिवर्तन में कितने हद तक प्रभावी होते हैं?
0: देखिए एयर पोल्यूशन का जलवायु परिवर्तन में बहुत ही ज्यादा रोल है। एयर पोल्यूशन बेसिकली होता है कि जब भी हवा में हमारे जो माइन्यूट पार्टिकल हैं जिनको हम लोग पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और PM 10 बोलते हैं, जो मेन पार्टिकुलेट मैटर हैं, जब भी हवा में उपस्थित हो जाते हैं उसकी वजह से फिर वहां का तापमान बढ़ेगा और कई श्वास संबंधी बीमारियां रहती हैं। ये जो मनुष्यों द्वारा उत्सर्जित जो PM 2.5 PM 10 हो गया, जो मुख्यतः स्टबल बर्निंग से होती हैं,
1: धुएं वगैरह
0: गाड़ियों के
1: से,
0: धुएं से होती हैं, तो ये किसी भी जगह का वातावरण अगर गर्म करेंगे वहां पे मुख्यतः वहां पे पक्का बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वहां का जलवायु परिवर्तन रहेगा, तो इनका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। ये सिर्फ स्वास्थ्य को नहीं डायरेक्टली प्रभावित करती हैं, ये उस जगह के क्लाइमेट चेंज को भी डायरेक्टली प्रभावित करती हैं,
1: जी
0: अतः हमको एयर पोल्यूशन को भी बहुत ही अच्छे से स्टडी करके और जो फ्यूचर के पॉलिसीज होनी चाहिए गवर्नमेंट को उसके बारे में डिसाइड करना चाहिए। हाँ
1: जी डॉक्टर विवेक जी, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि जब भी एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो धुएं की बात होती है, और धुएं से अगर हम आगे निकलते हैं, शहरों की बात करते हैं, या फिर रोड में चलते हुए हम देखते हैं कि उसमें धूल उड़ते हैं, तो क्या ये भी एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारक हो सकता है?
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि नॉर्मली जो लोग सोचते हैं कि एयर पोल्यूशन सिर्फ
1: धुएं से,
0: धुएं से होता है या गाड़ियों से होता है, बट एयर पोल्यूशन कई बार प्राकृतिक कारणों से होता है। जैसे राजस्थान के बारे में बात करें और जो तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई हो गया इधर साइड में और गुजरात के कुछ रीजन है, तो यहाँ पे क्या होता है कि उधर गल्फ कंट्रीज से कई बार चलने वाली ये देखा गया जो हवाएं रहती हैं वो अपने साथ धूल लेके आती, तो इन धूल के कणों की वजह से भी कई बार एयर पोल्यूशन बढ़ता है और इन धूल के कणों से होने से वातावरण में कई बार बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि विजिबिलिटी कम हो जाएगी और जितनी हमारी उड़ाने वो भी डिले रहता है। जो धूल के कण है ये एक बहुत ही बड़ा कह लीजिए कि प्राकृतिक कारण है एयर पोल्यूशन का।
1: अभी आपने जिक्र किया कि जो तटीय इलाके हैं या फिर जो राजस्थान इलाके हैं, जो डेजर्ट के इलाके हैं, उन सब एरिया में गर्मी ज्यादा पड़ती है, गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण ये एयर पोल्यूशन भी हो सकता है?
0: हाँ तो बिल्कुल सही करें, क्योंकि जैसे बोल रहे कि धूल के कण साइज में रिलेटिवली बड़े होते हैं, जैसे PM 2.5 PM 10 से ये कई बार ऊष्मा को अवशोषित कर लेते, वहां का तापमान न तो जल्दी, पहली बात तो गर्म नहीं होगा, गर्म हो जाएगा तो जल्दी से
1: ठंडा
0: कूल
1: नहीं।
0: नहीं रहेगा,
1: जी
0: तो
1: जी
0: एक कारण ये भी रहता है कि धूल के कण, जिसकी वजह से वहां तापमान जो है, अगर आप इन जनरल देखें एवरेज लें तो चूरू मुझे लगता है पूरे भारत का सबसे गर्म क्षेत्र रहता है,
1: जी
0: लगभग 50 48
1: 50
0: 50
1: पहुंच
0: तक
1: जाता है।
0: रहता है,
1: जी
0: हमेशा न्यूज में आता रहता है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: इसका एक कारण वही है क्योंकि वहां पे भी गर्मी खूब अच्छी पड़ती है, उधर से डस्ट के जो पार्टिकल्स वो भी आते रहते
1: जी
0: हैं, मिल के सारे प्रभाव एक दूसरे को संपूरित करते हैं।
1: जी जी जैसे कि अभी आपने शुरुआत में ये कहा कि स्टबर्न है, या फिर हम लोगों के मन में, लोगों के आम पब्लिक के मन में तो यही रहता है कि ये जो एयर पोल्यूशन है वो धुएं की बात होती है, और बहुत आगे बढ़ जाए तो वो धूल की बात होती है। लेकिन कई जगह देखें, शहरों में या फिर कई जगह जो औद्योगिक जो कल कारखाने हैं, उसकी वजह से भी कह सकते हैं कि जो पॉल्यूशन है या या फिर जो क्लाइमेट

0: है वो भी बहुत प्रभावी होता है।
1: बिल्कुल, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब भी कोई उद्योग स्थापित होंगे तो वो अपने साथ वहाँ के जो जमीनी स्तर पे परिवर्तन लाएगा, वहाँ के जो जो जली स्तर पे भी परिवर्तन लाएगा, और वहाँ के जो वायु के पर्यावरण के उस पर भी परिवर्तन लाएगा। तो जब भी ये देखा गया है इन जनरल कि जहाँ पे भी औद्योगिकरण बहुत तेजी से हुआ है, उन उन सब जगहों पर एयर पोल्यूशन भी बहुत तेजी से बढ़ा है। पास्ट में अगर आप बात करें तो लंदन स्मॉग के नाम से एक फिनोमेना हुई थी 1954 में, कई दिनों तक तो सनलाइट दिखी नहीं, 10 10 दिन तक, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, लेकिन
0: जी
1: वो तो ये सब कहीं ना कहीं इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत ही तेजी से औद्योगिकरण हुआ बिना किसी प्लानिंग के। और कह लीजिए कि मनुष्य एक हमेशा कुछ ज्यादा करने की कोशिश करते हैं,
0: प्रकृति के साथ में ज्यादा छेड़छाड़ हो
1: छेड़,
0: गई, वनों की कटाई ज्यादा हो गई,
1: हाँ
0: या फिर वहां पर जो औद्योगिक के जो
1: इकाइयां,
0: कल
1: हाँ
0: कारखाने हैं वो ज्यादा उस बस गए हैं, हो गए हैं, जिसकी वजह से ये
1: हाँ
0: पॉल्यूशन।
1: बिल्कुल, क्योंकि धरती की हमारी माता की क्षमता है, वो हमारी धरती माता उद्योगों को ऐसा नहीं कि वो विरोध करती, लेकिन हर चीज एक सीमित
0: जी
1: लेवल तक रहेगा, तो हमारी प्रकृति इतनी अच्छी है कि वो हमारे सारे चीजों का टेक केयर करती है।
0: जी वैसे कहा जाता है, हम देख भी रहे हैं कि आजकल सूखा ज्यादा पड़ने लगा है, या फिर कहीं कहीं ज्यादा बारिश होने लगी है, यानी कि जलस्तर कम भी हो रहा है और ज्यादा भी हो रहा है। तो ग्लेशियस के पिघलने से जलस्तर में क्या बढ़ोतरी हो रही है?
1: हमारे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो ग्लेशियर्स जो कई लाखों सालों से नहीं पिघल रहे थे, अगर साइंस की बात करें तो रिसेंट स्टडीज दिखा रही कि वो अगले 10 20 सालों में उनका और मतलब प्रेडिक्शन जो है पिघलने का है। तो जैसे ही वो पिघलेंगे तो उससे एक नुकसान क्या रहेगा, जो तटीय क्षेत्र में जैसे सपोज भारत में हो गया, मुंबई या उसके जो भी तमिलनाडु क्षेत्र में रीजन है, ये इनके जलमग्न होने के प्रायिकता जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि वो एक ग्लोबल वाटर कन्वेयर बेल्ट चलता है, जो वहां से जो वाटर पिघलेगा तो कहीं ना कहीं की वजह से वो जल का स्तर बढ़ेगा। और रही बात जमीनी स्तर के जल में कमी की, तो वो कहीं ना कहीं अंधाधुंध खनन हुआ है, जैसे कई सिटीज में से आप अगर प्रायतः देखते होंगे कि जो चेन्नई में जो ग्राउंड वाटर लेवल काफी नीचे चला
0: नीचे
1: गया
0: चला
1: है।
0: गया, वैसे
1: और
0: दिल्ली में भी उसी प्रकार की हालत हो गई है।
1: हाँ, आप ये समझिए कि एक चक्रीय प्रक्रम है, तो क्लाइमेट चेंज एक फीडबैक मैकेनिज्म के तहत चलता है, इसमें सिर्फ एयर पोल्यूशन नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं अगर एयर पोल्यूटेड रहता है तो कहीं ना कहीं वाटर को पोल्यूट करेगा, क्योंकि वो
0: जी
1: कहीं ना कहीं वो एयर जो है वाटर में मिक्स रहेगा,
0: जी हाँ
1: वाटर पोल्यूट करेगा तो कहीं ना कहीं सॉइल पोल्यूटेड रहेगा, सॉइल पोल्यूटेड रहेगा तो हमारा खाना पोल्यूटेड रहेगा, फिर मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, फिर जनघनत्व तो बिगड़ेगा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन
0: यानी
1: रहेगा,
0: कि सब एक दूसरे से बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: जुड़े
1: जुड़े
0: हुए
1: हुए
0: हैं,
1: हैं।
0: और जिसकी
1: हाँ
0: वजह से हमारे जो क्लाइमेट चेंज होता है उसमें प्रभाव पड़ता है। जी, और वैसे जब क्लाइमेट चेंज होता है तो जैसे अभी आपने कहा कि हमारे शरीर पर यानी कि हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, इसके और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं?
1: क्लाइमेट चेंज में अभी रिसेंट की जो स्टडीज हैं ये बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज का सिर्फ श्वसन संबंधी इस पर नहीं प्रभाव पड़ता है, अगर एयर पोल्यूशन वगैरह के बारे में बात करें, अभी ये देखा जा रहा है कि मलेरिया जैसे डिजीजेस भी क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी जो आवृत्ति है वो बढ़ गई है। ये पहले ऐसा नहीं था, मतलब जब ये आज से 15 साल पहले ऐसा नहीं था कि क्लाइमेट चेंज से स्वास्थ्य में मलेरिया जैसे रोगों में वृद्धि हो रही हो, तो क्लाइमेट चेंज से और एयर पोल्यूशन की वजह से जैसे अभी श्वसन संबंधी तो बीमारियां ही, इसके अलावा जैसे कि जो शहरों का धुआं है इससे ये देखा गया आमतौर पर कि इससे कैंसर के फेफड़ों के
0: लक्षण
1: कैंसर होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपका जो यूवी रेज अगर आ रही है वो आपके अगर स्किन में डायरेक्टली पहुंच जा रही है हानिकारक वाली यूवी रेज, तो उससे स्किन कैंसर बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं बाह्य रूप से भी वो कर रही है मानव शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, और अंदर भी ढेर सारे नए नए रोगों को और नए नए वायरसेस को या ये कह लीजिए मतलब नए नए टाइप के रोगों को भी जनरेट कर रही है।
0: जी, तो वन्य जीवन पर, जीव जंतुओं पर तो पड़ ही रहा है, फसलों पर, वन्य जीवन पर, पेड़ पौधों पर किस प्रकार से ये हानिकारक साबित हो रहा है?
1: देखिए, अब पेड़ पौधों से जलवायु परिवर्तन का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अब मान लीजिए कि अगर कोई एक पेड़ है, जैसे उसको हमको पता है कि ये नियत ताप पर ही ये पेड़ उगेगा, या कोई कृषि है जो नियत ताप पर उगेगी, अब वहां पे अगर मान लीजिए हीट वेव किसी साल
0: ज्यादा
1: हो
0: हो गया।
1: गया
0: हाँ जी
1: तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि वो आपका जो फसल है वो नष्ट हो जाएगी।
0: जी
1: ये देखा है कि हाल के समय में ओले वगैरह की जो आवृत्ति वो ज्यादा बढ़ गई, पहले भी ओले पड़ते थे लेकिन इनकी तीव्रता और आवृत्ति इतनी ज्यादा नहीं
0: अब
1: थी,
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: पड़ते थे कभी कभार पड़ते थे और इतनी तीव्र नहीं होते थे।
0: जी
1: ये सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में बढ़ोतरी हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी
0: क्लाइमेट
1: से हो
0: चेंज
1: रहा है
0: बहुत
1: वो।
0: तेजी से हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, एयर पोल्यूशन का असर पानी पर भी पड़ता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो समुद्री जीव हैं उन पर भी असर जरूर होता है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, इक्वा कल्चर है जो हमारे जो मरीन लाइफ है, जो प्रकृति ने बैक्टीरिया और क्लोरोफिल और जो पूरा एक सिस्टम है एक्वाटिक लाइफ रहता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि एयर पोल्यूशन का इफेक्ट जो मरीन कोरल रीफ्स हो गया या जो अंदर के जीव जंतु हैं उस पर भी पड़ रहा है, और कई जीव जंतु उसकी वजह से मर जा रहे हैं कई बार हो रहे
0: यानी
1: हैं, तो
0: कि जो मानवीय गतिविधियां हैं उनसे तो होता ही होता है, उसके अलावा जो
1: प्राकृतिक
0: प्राकृतिक
1: गतिविधियां भी।
0: गतिविधियां
1: हाँ
0: हैं उनसे भी
1: हाँ
0: ये सब चीजें बहुत खराब हो जाती
1: हाँ
0: हैं।
1: कि प्रकृति जो गतिविधियां करती है वो कंट्रोल वे में करती है,
0: जी
1: वो उसका कह लीजिए कि वो क्लीनिंग मैकेनिज्म है, मेरा मानना है कि वो प्रकृति अपने हिसाब से वो बैलेंस करती है, वो मानव के हित में रहती है। समस्या वहां पर आती है जहां पे मनुष्य का लालच जो सीमा से परे हो जाता है और वो प्रकृति के साथ सीमा के परे जो है खिलवाड़ करता है, उसकी वजह से ज्यादा ये जलवायु
0: यानी
1: परिवर्तन
0: कि हम
1: की।
0: ये कह सकते हैं कि जो प्रकृति के अगेंस्ट में, ठीक है, उलट जो भी काम काम हम कर रहे हैं, मानव जाति कर रही है, उससे तो एयर पोल्यूशन होगा ही और जो प्राकृतिक जो संतुलन है वो बिगड़ेगा,
1: वो बिगड़ेगा।
0: ग्रीन गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए ऐसी कोई योजनाएं बन रही हैं?
1: जो शहरी क्षेत्रों की नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, एनकैप हो गया, उस तरह के कई मानक जो रहती है भारत सरकार लेती है कि आपको जैसे ग्रेप लग जाता है कई बार दिल्ली जैसे शहरों में, और इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2030 तक आधा करने का हमारी सरकार ने सोच रखा है, प्लान कर रखा है। ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है जिससे कि हमारे तापमान में संतुलन बना रहे और जो जलवायु परिवर्तन है कंट्रोल वे में रहे।
0: डॉक्टर विवेक सिंह जी, अपने श्रोताओं को आप चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप प्रकृति के साथ कदम से कदम मिला के चलें, और जो भी आप अपने स्तर पे जितनी भी चीजों को जो हमारे संसाधन है सीमित रूप से प्रयोग करें जहां पे जरूरत हो। प्रकृति अपना खुद का ही जो बैलेंस वो खुद से कर लेती है, तो बस थोड़ा सा हमको प्रयास चाहिए कि हमको अपने चीजों को लिमिटेड फॉर्म में कंट्रोल वे में यूटिलाइज करना है।
0: जी डॉक्टर विवेक सिंह जी, आप आए, जलवायु वृद्धि के कारणों का, प्रभावों का हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे जो प्रकृति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपने इतनी सारी जानकारी, बहुत सारी आपने बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद।

जलवायु परिवर्तन और बदलता मौसम, कारण और निदान के उपाय। इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाइक का था और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, मिट्टी दी महक। जी हाँ, पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक सुनते हैं आप।

يا دور.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने फिलीपींस के प्रवासी कामगार विभाग के मंत्री हंस ल्यूक कैगडेक से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रवासियों के आवागमन और पलायन से जुड़े साझा मुद्दों पर सहयोग के बारे में चर्चा की। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात ने फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में हुए हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की घटना को अस्वीकार्य बताया है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने इस शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और इस संघर्ष में नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुकूल होर्मुज जलडमरू मध्य में मुक्त और निर्बाध आवाजाही की भी अपील की। मंत्रालय ने कहा है कि भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान में सभी प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार है। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉ भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा के अध्यक्ष डॉ अदापा प्रसाद ने भाजपा की इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक जीत पर बंगाल और असम की जनता को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुच्चेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सिया पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. India has said the attack on the Fujairah Petroleum Industries zone in the UAE, which resulted in injuries to three Indian nationals, is unacceptable. Three Indian nationals were injured after a fire broke out at the Fujairah Petroleum Industries zone yesterday, following a drone attack from Iran. In a statement, the External Affairs Ministry called for the immediate cessation of hostilities and condemned the targeting of civilian infrastructure and innocent civilians. It said India continues to advocate for dialogue and diplomacy to address the situation so that peace and stability may be restored across West Asia. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today said that development cooperation remains a key pillar of the partnership between India and Jamaica. Dr. Jaishankar was addressing the media after his meeting with Jamaican Foreign Minister Kamina Johnson-Smith and other cabinet members. The External Affairs Minister said the talks were comprehensive and substantive, covering the full spectrum of bilateral ties and identifying new avenues to further strengthen cooperation. He noted that both countries signed several important agreements and discussed the effective implementation of recently concluded MOUs in areas such as digital transformation, cultural exchange, sports, and digital payments to ensure tangible outcomes on the ground.
3: We reviewed the entire gamut of India-Jamaica relations. We identified new avenues for further strengthening our partnership. We have signed several important agreements, and we discussed effective implementations of MOUs, which have been recently concluded in the fields of digital transformation, cultural exchange, sports, and digital payments to ensure tangible outcomes on the ground.
2: The government has said there has been no dry out at LPG distributorships across the country and has assured that measures are being taken to ensure uninterrupted availability of petroleum products and LPG amid the evolving situation in West Asia. During the interministerial briefing in New Delhi last afternoon, officials asked citizens to avoid panic buying of petrol, diesel and LPG and to rely on official sources for accurate information. It said that online LPG cylinder bookings across the country have increased to 99% on an industry basis and commercial LPG supply has been restored to around 70%. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has reiterated the government's commitment to building

घर आंगन। घर आंगन के इस शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों आप हमें सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। दोस्तों जैसे आपका हमारा रिश्ता जुड़ा है प्रेम से, उसी तरह यूं ही प्रेम से चलता रहे और आप हमें भेजते रहें अपने ढेर सारे मैसेजेस और हम आपका पूरा ख्याल रख सकें, यानी आपकी पसंद के कार्यक्रम सुनवा सकें और आपके पसंद के गीत पेश कर सकें। दोस्तों प्रेम की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है और इसमें अनेक भावनाओं और अलग अलग विचारों का समावेश होता है। ये खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर रहता है। ये एक मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना है। सच्चा प्यार वही होता है जो सभी हालातों में साथ हो, यानी दुख और सुख दोनों में। कहते हैं कि प्यार होता है तो हमारी जिंदगी बदल जाती है, पर जिंदगी बदलती है या नहीं ये इंसान पर निर्भर करता है।

0: और हमलों का इलाज करने के लिए आवश्यक है। इस दिन का उद्देश्य है अस्थमा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इसके प्रबंधन में सुधार करना और प्रारंभिक निदान को बढ़ावा देना। आइए सुनते हैं आज एक विशेष कार्यक्रम, अस्थमा का आयुर्वेदिक इलाज विषय पर डॉक्टर प्रियंका पांडे से रश्मि कुकरेति की बातचीत।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेति। दोस्तों, अस्थमा एक ऐसी समस्या है जो कि जब पोल्यूशन होता है, जब प्रदूषण होता है तो बहुत बढ़ जाती है, और अगर बढ़ती उम्र हो और ये समस्या घेर ले तो बहुत ही, जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए बहुत ही स्वास्थ्य के संबंधी परेशानियां बढ़ जाती हैं, और यदि सांस ना आए तो फिर तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। तो अस्थमा रोग है, उसको किस प्रकार से हम उपचार कर सकते हैं, उसके क्या क्या लक्षण रहते हैं, ये सारी बातों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज गोल्ड के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रियंका पांडे। डॉक्टर प्रियंका पांडे, आपका गोल्ड के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, रेडियो सुनने वाले सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, आप तो बहुत सारे रोगियों को रोज ही परामर्श देती हैं, कितने केसेस आते हैं जिनको अस्थमा की समस्या रहती है?
2: अस्थमा के मरीज तो बहुत मिल ही रहे हैं, साथ ही खांसी जुकाम, मैं कहूंगी ज्यादा है खांसी जुकाम के मरीज।
1: अच्छा,
2: तो वो ज्यादा मिलते हैं अगर उनका से उपचार ना करें तो। अगर वो एलर्जिक हैं या उनमें कोई और डिजीज है तो उन्हें अस्थमा के लक्षण है, या उन्हें पहले से अस्थमा है तो उनके लक्षण बढ़ने की संभावना भी अभी होती है।
1: यानी कि अगर खांसी जुकाम हो रहा है और मौसम बदल रहा है तो थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता
2: हाँ,
1: तो है,
2: तो जरूरी ही है। वैसे तो अस्थमा एलर्जिक है, कि अधिकतर मतलब 60-70% लोगों में एलर्जी की वजह से अस्थमा मिलता है, लेकिन कुछ लोगों में विदाउट इसके भी अस्थमा मिल सकता है। टेम्परेचर वेरिएशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो बहुत सारे कारण है, लेकिन इस समय सीजनल वेरिएशन जब भी होगा तो अस्थमा के मरीज ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, कब आप ये तय करती हैं कि ये अस्थमा का रोग हो गया है? यानी कि एलर्जीज तो भी आजकल बहुत ही, हर किसी व्यक्ति को कुछ ना किसी चीज से एलर्जी होती ही है, तो वो कौन सी स्टेज होती है कि जब आप कहते हैं कि अस्थमा हो गया है? अब
2: देखिए, अस्थमा क्या है? अस्थमा जो है हमारी श्वसन संस्थान यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है
1: जी।
2: तो अस्थमा में बेसिकली क्या है कि जो जो एयरवेज हैं, जिनके थ्रू एयर अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, उनमें या तो सूजन आ जाए या फिर वो जो मसल्स हैं उनमें स्टिफनेस आ जाए, जिसकी वजह से एयरवेज जो है वो जितने अच्छे से एयर को पास करते हैं वो ना कर पाए और सांस लेना और सांस बाहर छोड़ना मुश्किल हो जाए, तो इस स्टेज को हम कहेंगे अस्थमा। इसके अलावा इसमें टेस्ट भी होते हैं, जैसे लंग कैपेसिटी जिससे हम नाप सकते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, इससे हम पूरी तरह पता लगा सकते हैं कि ये अस्थमा है या नहीं है।
1: तो डॉक्टर साहब, जब आपके साथ पास मरीज आता है तो किस प्रकार से उसका इलाज किया जाता है दमा रोग का?
2: देखिए, दमा रोग का, देखिए अगर वो उसे अस्थमा का अटैक है तो उसके लिए तो फिर देखिए दवाइयां ही आपको देनी पड़ेंगी। तो इसके लिए बहुत सारी दवाइयां हैं जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं, आप उनको देंगे तो उनका जो अटैक है वो धीरे धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा मैं कहूंगी प्रिवेंशन है जो सबसे बड़ा चीज है। इसके जितने भी प्रिवेंटिव कारण है, पहले तो ये है कि अगर एलर्जी की वजह से अस्थमा है तो ये कारण हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज उस व्यक्ति को एलर्जी कर रही है। एलर्जी क्या है? एलर्जी एक है हमारी इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स है। कई बार हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो नॉर्मल चीज है, जो मतलब जो हार्मफुल नहीं होती है उसको भी डेंजरस मानता है, इसकी वजह से वो उसके प्रति इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करके सूजन और ये सब जकड़ाहट पैदा करता है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर एलर्जी हो रही है तो वो किस कारण से हो रही है। उसके अलावा मान लीजिए खांसी जुकाम है, दूसरा कारण ये हो सकता है, या फिर मान लो दर्द की दवाई खा रहा है, कई बार उसके साइड इफेक्ट से भी अस्थमा के अटैक आ सकता है।
1: अच्छा।
2: कई बार स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, तो वो सब कारण से भी दूर है। और उसके अलावा लाइफस्टाइल,
1: यानी कि सिर्फ बदलता मौसम ही नहीं है, और भी कोई कारण हो सकते हैं जो उसको ट्रिगर कर सकते हैं।
2: जो ट्रिगर कर सकते हैं, देखिए
1: पहचानना जरूरी है
2: कि किस चीज से आपको एलर्जी है, वो पहचानना बहुत जरूरी है।
1: तो अब एलर्जी हो गई हमें और ये समस्या पैदा हो ही गई, तो आपका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है वो क्या रहता है, और खाने पीने में किस प्रकार का ध्यान मरीजों को रखना चाहिए?
2: देखिए, खाने पीने में तो मैं कहूंगी खाना हल्का खाना चाहिए।
1: अच्छा।
2: एक गर्म खाना खाएं, इसमें कफ, हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तो इसमें कफ और वात का हम इन्वॉल्वमेंट मानते हैं, कि म्यूकस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज कर रहा है, सूजन आ रही है, इसलिए इस वजह से भी म्यूकस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो खाना ऐसा होना चाहिए जो कफ को भी ना बढ़ाए और वात को भी ना बढ़ाए। तो खाना जो है हल्का हो, मतलब तली हुई चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, बहुत मीठी चीजें नहीं खानी है। खाना ऐसा खाए जिससे पेट वगैरह अच्छे से साफ हो। कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होने से भी इवन लंग्स की कैपेसिटी में भी फर्क पड़ जाता है। तो इन सब चीजों का स्पेशली ख्याल रखना है।
1: मतलब खाने पीने में जो आप कह रही हैं कि सादा खाना होना चाहिए।
2: हाँ, सादा खाना खाना। रात को जैसे अधिकतर लोग क्या करते हैं कि ऑफिस से जाते हैं, 8-9 बजे खाया और उसके बाद आधा पौन घंटे बाद ही लेट गए, तो खाने के और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप रखें, जिससे खाने का डाइजेशन अच्छा हो, खाना पचे अच्छा, पेट अच्छे साफ हो और कहीं ना कहीं वातानुलोम हो। हमारे यहाँ वातानुलोमन चिकित्सा कहते हैं, पेट साफ होगा, हमारा जो जितने भी मतलब बॉडी वात के काम है वो सही से होंगे, तो अस्थमा का अटैक होने की संभावना भी सबसे कम होगी।
1: डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि अगर आपको सांस की समस्या है तो दही का प्रयोग ना करें, कुछ कहते हैं सफेद चीजें ना खाएं, कुछ कहते हैं चावल ना खाओ, भाई इससे सांस की समस्या हो सकती है, ये बातें कहाँ तक सच है?
2: देखिए, सफेद चीजें तो मैं नहीं खाऊंगी। दही और चावल की जहां तक बात है, दही और चावल ना कफ वर्धक होता है
1: जी,
2: ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। हर किसी को नहीं कहूंगी मैं, लेकिन जो थोड़ा सा कफ प्रकृति है उनको प्रॉब्लम करेगा। हमारे यहाँ प्रकृति के अकॉर्डिंग चिकित्सा होती है, तो जो कफ प्रकृति व्यक्ति है उनको ये करेगा, दही और चावल से प्रॉब्लम होगी।
1: रात को ही दही चावल ना खाए, दिन में खा सकते हैं?
2: उनके लिए तो देखिए दिन में भी प्रॉब्लम करेगी, जो कफ प्रकृति है।
1: तो यानी कि अगर खांसी जुकाम की समस्या हो रही है और इस प्रकार की सांस की समस्या है तो दही चावल थोड़ा सा कम करके खाएं।
2: हाँ, बल्कि चावल तो एक बार ले ले, देखिए उसका भी संस्कार हम कर सकते हैं। जैसे चावल है तो अगर आप उसे पकाएं तो उसमें थोड़ा सा लौंग और दालचीनी डाल के पकाएं, तो जिससे उसमें कुछ गर्माहट आए। और दही को देखिए थिक तो कभी भी नहीं खाना चाहिए, उसे पतला करें और उसमें थोड़ा सा काला नमक है, जीरे का पाउडर डाल के
1: काली मिर्च
2: तब खा सकते हैं, वो भी दिन में। मतलब थिक दही तो नहीं खाना चाहिए अस्थमा के पेशेंट को,
1: और रात को भी नहीं खाना चाहिए हम।
2: हाँ, रात को तो बिल्कुल नहीं,
1: बिल्कुल नहीं खाना,
2: रात को बिल्कुल नहीं।
1: तो डॉक्टर साहब, और किस प्रकार का उनको ध्यान रखना चाहिए खाने पीने में? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सांस की समस्या है, अब खाना तो है ही, लेकिन किस प्रकार से क्या क्या खाएं हम लोग?
2: देखिए, हल्का जो भी भोजन हो, मतलब और स्पेशली मैंने कहा कि रात को तो बिल्कुल ही हल्का भोजन लें, जैसे बिल्कुल हल्की सब्जियां जैसे लौकी है, तुरई, टिंडा, जो सिंपल है, मतलब भारी चीजें आप छोले, राजमा, उड़द की दाल, ये सब रात को बिल्कुल नहीं।
1: दूध वगैरह पीना उचित रहेगा रात को?
2: दूध ले सकते हैं, लेकिन हल्दी डाल के,
1: हल्दी डाल के
2: क्योंकि हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, तो ये हल्दी डाला दूध अच्छा रहेगा।
1: तो इनको दवाइयां वगैरह डॉक्टर साहब आप कैसे देते हैं, और अगर किसी को अटैक पड़ जाए तो उसका भी इलाज आयुर्वेद में होता है?
2: देखिए, बिल्कुल ही एक्यूट स्टेज में तो मैं नहीं कहूंगी कि उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई, सीवियर अटैक में नहीं देते हैं, लेकिन अभी उसे परेशानी शुरू ही हुई है तब आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेने से वो
1: फायदा होता
2: है। फर्दर प्रोग्रेस नहीं होगी डिजीज, तो एक्यूट स्टेज में बिल्कुल सीवियर अटैक है तो उसमें हम नहीं देते, लेकिन शुरुआत में ही पेशेंट आ जाए तो उसमें उसका प्रोग्रेशन नहीं होता डिजीज का।
1: डॉक्टर साहब, अगर भाप वगैरह की जो कहते हैं भाप लीजिए वगैरह, ये कहाँ तक कारगर सिद्ध होती है?
2: हाँ, नहीं, भाप जैसे अगर अस्थमा के ट्रीटमेंट में हमारे यहाँ कहा भी गया है कि अगर जिसको कफ बनना हो तो उसको सबसे पहले जो सरसों का तेल है
1: जी,
2: इसमें थोड़ा गर्म करें, इसमें सेंधा नमक डालें, उससे चेस्ट की मालिश करें, चेस्ट की भी और बैक की भी। उसके बाद उसे थोड़ी सिकाई करनी चाहिए, उससे जो है कफ क्या है पिघलता है और जो एयरवेज है वो खुलते हैं,
1: खुल जाते हैं
2: और अस्थमा प्रोग्रेस नहीं होता है आगे। तो रोज ये सिकाई वगैरह करें, और इसके अलावा दवाइयां भी हैं।
1: आपने कहा डॉक्टर साहब की श्वसन नली खुल जाती है सिकाई वगैरह करने से, डॉक्टर साहब क्या और भी कोई तरीके हैं जो कि सूजन वगैरह कम करने में काम आती है? जैसे हमें पता है कि हमारा काम तो चल रहा है थोड़ा बहुत, अगर बहुत कम स्तर का अगर तकलीफ है तो काम तो चलता है, लेकिन सूजन अभी है मान लीजिए, तो कुछ और भी तरीके हैं कि खाने पीने में कोई ऐसी चीजें हैं जिससे अंदर की इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह कम हो?
2: हाँ, देखिए इसके लिए दवाइयां हैं, लेकिन मैं कहूंगी दवाइयां हमेशा चिकित्सीय परामर्श से ही लें।
1: जी, जी, जी।
2: इसके अलावा तो देखिए घर में क्या ले सकते हैं, तो हल्दी का दूध लें, जिससे प्रिवेंशन एक्सपेक्ट में कह रही हूँ, थोड़ा सौंठ होती है घर में, काली मिर्च होती है और पिपली होती है, इन सबको ना लगभग तीनों को मिला के आधा चम्मच के करीब शहद के साथ चाटें, इससे भी जो कफ पिघलने में और एयरवेज क्लियर होने में बहुत सहायता मिलती है।
1: बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कि अगर वाकई ये समस्या थोड़ी सी बढ़ गई है या लग रहा है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है

दोस्तों, आज है विश्व अस्थमा दिवस। इस वर्ष की थीम है अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों के लिए सूजन रोधी इनहेलर की उपलब्धता अभी भी एक तत्काल आवश्यकता। इस बात पर जोर देना है कि अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों को सांस के माध्यम से ली जाने वाली दवाएं मिल सकें जो इस बीमारी को नियंत्रित करने

0: तो खुद का इलाज खुद ना करें
1: हाँ
0: और डॉक्टर के पास जरूर जाएं।
1: हाँ
0: अगर आयुर्वेद की भी शरण में जाते हैं तो जो शुरुआत में ही वो रोग को जरूर
1: हाँ
0: पकड़
1: हाँ
0: लेगा, और वो भी चिकित्सक के परामर्श के अलावा कोई दवाई ना
1: ना
0: ले।
1: ना ले
0: डॉक्टर साहब, बहुत लोग तरह तरह के जो हम कहेंगे इम्यूनिटी बूस्टर्स का प्रयोग शुरू कर देते हैं।
1: आपकी इम्यूनिटी ही सब कुछ है, तो ये फायदेमंद तो है, लेकिन मैं कहूंगी पूरी प्रकृति के अकॉर्डिंग। हर कोई हर चीज नहीं खा सकता है, तो प्रकृति के अकॉर्डिंग खाए जा सकते हैं फिर भी। लेकिन गिलोय है और आंवला है, विटामिन सी से भरपूर है, ये सारी चीजें लगभग सभी को सूट करती हैं।
0: तो अगर घर में भी जैसे आंवला, तो उबाल कर एक आंवला हम लोग ले
1: हाँ,
0: सकते
1: ले
0: हैं।
1: सकते हैं।
0: तो हम जो रोजमर्रा के जो हमारे खाने हैं, उसमें भी ये ध्यान रखें कि गला वगैरह ठीक रहे, खाने का ताजा रहे और उसका तापमान भी ठंडा ना हो।
1: ठंडा
0: जैसे
1: ना, हाँ, वो
0: जी
1: खाना तो गर्म, देखिए
0: हाँ
1: डाइजेशन भी अच्छा रहता है उससे,
0: हाँ
1: और जहां आपका डाइजेशन अच्छा है तो पूरी बॉडी अच्छा
0: और
1: वर्क
0: भरपूर
1: करती है।
0: नींद लें जो
1: हाँ, वो
0: है
1: तो
0: ना,
1: खैर
0: वो
1: जरूरी
0: भी
1: है ही।
0: बहुत जरूरी है। अगर हमारी दिनचर्या अगर ठीक रहेगी तो मुझे लगता है काफी हद
1: हाँ
0: तक इस रोग पर हम काबू पा
1: हाँ
0: सकते हैं।
1: प्राणायाम में ध्यान दें, इससे जो है लंग कैपेसिटी बढ़ती है, सूजन जो है एयरवेज की वो कम होती है, तो प्राणायाम
0: बहुत
1: पे
0: जरूरी
1: बहुत
0: है ना।
1: जरूरी है।
0: ये तो हम कहेंगे कि एक तरह से ये दिनचर्या का इसको रूप
1: हाँ,
0: दें, कि जैसा कि डॉक्टर प्रियंका पांडे कह रही हैं कि योग और प्राणायाम में
1: प्राणायाम,
0: जरूर कुछ समय
1: वॉकिंग,
0: दें।
1: रनिंग, मतलब थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज जरूर रखें, क्योंकि बॉडी के साथ साथ आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाने में भी मदद करेंगी।
0: जी, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर प्रियंका पांडे आपने। और मुझे लगता है कि अगर हम एक संतुलित भोजन लें, भरपूर नींद लें, और जैसा कि आपने कहा योग को भी अपने जीवन
1: हाँ
0: में स्वीकारें, अंगीकार करें, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग के प्रचार प्रसार के लिए बहुत, उनका विशेष एक वो रहा है कि भाई हमारे पूरे देशवासी योग को अपनाएं और अपनी साथ में जो कैपेसिटी है वो भी योग से बहुत अच्छी
1: हाँ
0: होती है।
1: योग तो
0: और
1: शरीर मन सबके लिए ही बहुत ही
0: हाँ,
1: मतलब फायदेमंद चीज है।
0: हर तरह से फायदेमंद है। डॉक्टर प्रियंका पांडे, आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे सुनने वालों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी धन्यवाद मुझे।

अभी आप सुन रहे थे बातचीत अस्थमा का आयुर्वेदिक इलाज विषय पर। डॉक्टर प्रियंका पांडे से बात कर रही थी रश्मि कुकरेती, और आज है दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी यानी जन्मदिवस। 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदकोट जिले की संधवान में जन्मे श्री ज्ञानी जैल सिंह का जीवन महत्वपूर्ण राजनीतिक योगदान और जनता की सेवा के प्रति समर्पण था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह अपनी विनम्रता और गरीबों के कल्याण के प्रति समर्पण के लिए भी जाने जाते थे। भारतीय राजनीति में उनके योगदान और जनता की सेवा के प्रति उनके समर्पण से प्रेरणा हमें सबको मिलती रहेगी।

0: कभी तो हंसाए।
1: दोस्तों आप क्या सुनना चाहते हैं, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आपके सुझाव और आपके विचार और आपकी पसंद का स्वागत है। आप हमें मेल भेज सकते हैं, हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com। सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में खूबसूरत सा गीत, फिल्म है सवेरे वाली गाड़ी।

गर्मियों का मौसम भी लोगों को पसंद आ सकता है, क्यों? अब आपको बताते हैं। और कुछ लोगों को इसको पसंद करना बात आपको चौंकाने वाली जरूर लग सकती है, पर जब आप जान जाएंगे इसकी खूबियां तो शायद आप भी पसंद करने लगेंगे इसे। इस मौसम के दिन लंबे होते हैं जिसमें समय की कमी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि अपने मनपसंद काम करने, खेलने, दोस्तों से मिलने जुलने और घूमने के लिए जो गर्मी का मौसम है वो बहुत ही अच्छा है। और शरीर के लिए पानी जरूरी होता है, तो ये केवल सौंदर्य विशेषज्ञ नहीं बल्कि फिजिशियन भी मानते हैं। योग सेंटर जाकर योग करने का जिनके पास टाइम नहीं होता, इसके लिए मौसम बहुत ही अच्छा है। वे घर पर ही रहकर सूरज की गर्मी को महसूस करते हुए एक्सरसाइज कर सकते हैं। और खास तौर पर पेय पदार्थ के लिए बेहतरीन मौसम है ये गर्मी। जी भर के चाहे जितना पानी, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, लस्सी और जूस पीजिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है और शरीर में जितना पानी जा सके उतना अच्छा है। तो इस मौसम की खास बात यह है कि मानव शरीर को मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण विटामिन डी इसी मौसम में मिलता है। और विटामिन डी से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और दिमाग को भी तेज करता है। सूरज की किरणें हमारे दिमाग पर पॉजिटिव असर डालती हैं। इससे जो है सेरोटोनिन फील गुड फैक्टर रसायन मिलता है, जिससे अच्छी नींद आती है और शरीर का तापमान भी संतुलित रहता है। शरीर का पसीना बाहर आना बहुत जरूरी होता है, इससे शरीर के बहुत सारे खराब तत्व बाहर निकल जाते हैं। किसी और मौसम में ये नहीं हो सकता, लेकिन गर्मी में ये बिना कोशिश के हो जाता है। तो जाना आपने कि कितनी सारी खूबियां हैं और आपको भी गर्मी का मौसम पसंद आ सकता है। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में गीत फिल्म है फासले।

और अब बात करते हैं कुछ तारीफ करने की, यानी प्रशंसा थेरेपी भी खुशी देती है। तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं? ऐसा कोई नहीं जो तारीफ सुनकर खुश ना हो। बल्कि चलिए इस बहाने किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और इससे ये प्रतीत होता है कि आपके जीवन में उसकी कितनी अहमियत है। एक दोस्त दूसरे दोस्त की तारीफ करे तो दोस्ती और गहरी हो जाती है। एक दूसरे के काम की तारीफ करना भी कला है। आपका काम काबिले तारीफ, या अगर आप ये किसी से कहते हैं कि उसके मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। किसी की होशियारी और उसके तेज दिमाग को देखकर आप ये बात कर सकते हैं। तारीफ का मतलब है दूसरों की खासियतों को उसके सामने या दूसरों के सामने कहना या उन्हें खास महसूस कराना। ये एक प्राकृतिक स्वभाव है कि हम सभी दूसरों से प्रशंसा पाना चाहते हैं। तारीफ के दो बोल रिश्तों को भी मधुर बनाते हैं। चाहे वे आपका साथी हो, परिवार हो, ऑफिस हो या रिश्तेदार, सभी की समय समय पर प्रशंसा कीजिए। इससे उनको खुशी का एहसास तो होगा ही और रिश्ते संवरने में भी मदद मिलेगी। और इसीलिए प्रशंसा करने में कंजूसी ना करें, दिल खोल कर करें।

दोस्तों, कपड़ों की जब बात करते हैं, अगर हम भारतीय सोच को देखें तो पश्चिमी सभ्यता को हम अक्सर आधुनिक समझते हैं, लेकिन वहाँ की आधुनिकता उनके वातावरण पर निर्भर करती है। तो दिखावे के लिए मॉडर्न कपड़े पहनना या पहनने का तरीका सिर्फ बाहरी दिखावा होता है, असली तस्वीर तो आपके मन में छिपी होती है। अच्छी सोच के साथ बेहद खूबसूरत बना सकते हैं आपके कपड़े, और हाँ, उसे ऐसे ही स्वीकार करें जैसा कि आप फिर किसी को देखकर करते हैं, यानी बदलाव आपको खुद नजर आएगा, क्योंकि विचार बदलेंगे तो नजरिया भी बदल जाएगा।

और अब हम यही कहना चाहते हैं कि हमें यूं ही सुनते रहिए। इसी वादे के साथ आपसे होगी अगली मुलाकात। तब तक के लिए सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। श्री मोदी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान में सभी प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार है। मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमरीका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के गया पहुंच गए हैं। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक मजबूत व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वियतनाम के राष्ट्रपति आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति तो लाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। शाम को राष्ट्रपति तो लाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। कार्यक्रम एक ही फिल्म से के आज के सफर की साथी हूं मैं, यानी मनीषा बोस। तो मेरे सभी लिसनर्स को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज फिल्मी सफर के इस दौर में लिए चलूंगी आपको, जब सिल्वर स्क्रीन का रोमांस सिर्फ पर्दे पर नहीं, दिलों में भी उतर जाया करता था। जी हाँ, बात 1972 की उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही कानों में किशोरदा की आवाज गूंज उठती है। तो लीजिए, एक ही फिल्म से के पहले गीत से शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर को मेरे यानी मनीषा के साथ।

0: restore peace and stability across West Asia. U.S. and Iran launch fresh attacks in the Gulf as the two sides wrestle control over Strait of Hormuz. External Affairs Minister S. Jaishankar holds talks with his Jamaican counterpart. Kamina J. Smith calls for stronger economic ties between the two countries. Political activities begin for government formation in West Bengal, Tamil Nadu and Kerala after declaration of assembly poll results. Education Minister Dharmendra Pradhan emphasizes need to transform India's research ecosystem. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीतिक आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमरीका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नवाचार आधारित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान तंत्र को बदलने की आवश्यकता पर जोर। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के

0: पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमरीका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है तथा पहले से ही नाजुक युद्ध विराम और कमजोर हो गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पहल प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा के बाद मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। इस पहल का उद्देश्य फंसे टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए गुजरने में मदद करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में सम्पन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सके। डॉक्टर जयशंकर ने आज जमैका के किंगस्टन में वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में परिवर्तनशील दुनिया और भारत की प्रतिक्रिया विषय पर लोगों को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने वैश्विक दक्षिण, सुधारित बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के बोधगया पहुंचे। हवाई अड्डे पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति तो लाम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति तो लाम के साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ एक व्यापारी प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति आज दोपहर बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नए मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को राज्य में केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन नामों को भाजपा संसदीय पर्यवेक्षक बोर्ड ने मंजूरी दी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसफ विजय की पार्टी तमिलगा विक्ट्री कड़गम 108 सीटें लेकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के शानदार चुनावी प्रदर्शन के बाद नवनिर्वाचित टीवी के विधायकों ने आज चेन्नई के पास पन्नयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में श्री विजय को औपचारिक रूप से अपना नेता चुना। एक रिपोर्ट।
3: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

0: एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस पार्टी में अनौपचारिक चर्चाएं जारी हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगा। यूडीएफ सूत्रों ने संकेत दिया है कि विधायक दल की बैठक दिल्ली से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। नव निर्वाचित विधायकों में वर्तमान विपक्ष के नेता वीडी सीताशान, पूर्व विपक्ष के नेता और पूर्व केपीसीसी अध्यक्ष रमेश चेन्नितिल्ला और वर्तमान केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ प्रमुख वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुलुथी की रिपोर्ट के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार।
1: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉ. भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति भारत की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल पीएचडी थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
4: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
1: भाजपा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और राजेंद्र गुप्ता ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कथित तौर पर राज्यतंत्र के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि वो हाल ही में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसदों को निशाना बनाने के लिए राजतंत्र का इस्तेमाल कर रही है।
5: मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पॉल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। जब तक हम आपके साथ थे हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए।
1: इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी सांसदों का भाजपा में विलय असंवैधानिक है और उन्होंने राज्यसभा से उनकी अयोग्यता की मांग की। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए उत्तराखंड से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन निवेश घोटालों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि वो साइबर जालसाजों के लिए फर्जी बैंक खाते बनाने और वित्तीय लेनदेन में सहायता करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत के दो पत्रकारों ने देश में साइबर अपराध का पर्दाफाश करने वाले चित्र आधारित रिपोर्टिंग परियोजना के लिए

0: अनिश्चित पुरस्कार जीता है। आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा तथा नताली ओबिको पियर्सन को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। उन्होंने ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की थी। एक रिपोर्ट।
1: हनोई के रिपोर्टर अनिरुद्ध घोषाल को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग वर्ग में विजय घोषित किया गया है। उन्होंने अमरीका की बॉर्डर पेट्रोल द्वारा गुप्त रूप से इस्तेमाल किए जा रहे व्यापक निगरानी उपकरणों की जांच की, जिन्हें मूल रूप से सिलिकॉन वैली में विकसित किया गया था और बाद में चीन में उन्नत रूप से विकसित किया गया। इस श्रृंखला ने चीन और अन्य देशों द्वारा इनके उपयोग को भी उजागर किया। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: भारत सूडान विदेश कार्यालय परामर्श का नौवां दौर कल पोर्ट सूडान में आयोजित किया गया। परामर्श की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका मामलों के संयुक्त सचिव और सूडान के विदेश मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवर सचिव ने की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों देशों ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 246 अंक गिरकर 77,024 पर, जबकि निफ्टी 73 अंक लुढ़ककर 24,047 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसी स्थिति रह सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमरीका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, जिसका नाम है एक ही कलाकार। आदाब सत श्री अकाल, स्वीकार कीजिए मेरा खुशनुमा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट रैना तंवर, लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें होगी उस महान कलाकार से जुड़ी दिलचस्प बातें, किस्से और गीतों की बहार। तो इस आधे घंटे के फिल्मी सफर में बने रहिए मेरे साथ। और आज जिस महान कलाकार की बात होगी, वो थे हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार, जिनकी आज पुण्यतिथि है। हिंट तो मिल ही गया, बस जल्दी से मेल करें हमारे इस ईमेल आईडी ipradiodelhi@gmail.com। और आप समझ ही गए होंगे कि मैं रहना अपने शो में आपसे करवाती हूँ गेस, यानी कि गीत सुनकर किस कलाकार की आज बातें होंगी, वो मेल करके जो हमें सबसे पहले संदेश भेजेगा वो हमारे आज के इस कार्यक्रम का फेवरेट श्रोता होगा। तो इंतजार रहेगा आपके संदेशों का। सुने और जल्दी से बताएं कि हम किस कलाकार को आज लेकर आए हैं।

जी हाँ, अभी हमने सुना फिल्म अनमोल घड़ी नूरजहां की आवाज का ये खूबसूरत नगमा, और देखते ही देखते हमारे पास ढेर सारे संदेश आ गए। क्या बात है, मन कर रहा है आज सभी को हमारे फेवरेट श्रोता का खिताब दे दूं। मगर कहते हैं ना, फास्टेस्ट मेल, जैसे हम गेम खेलते हैं फास्टेस्ट फिंगर का, ऐसे मैंने फास्टेस्ट मेल मैसेज जिसने पहले दिया उसका नाम बताना तो बनता है। वो है हमारे आज के फेवरेट श्रोता सुदर्शन मुखी जी, जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रसिद्ध संगीतकार जिनकी पहली फिल्म में संगीत देने के 64 साल बाद तक अपने साज से जादू बिखेरते रहने के बावजूद 67 फिल्मों में ही उन्होंने संगीत दिया। लेकिन कहते हैं ना, आज जिनकी हम बात कर रहे हैं वो हैं नौशाद अली साहब। बेशक फिल्म संगीत देने की गिनती उतनी ना हो, मगर कहते हैं ना, इनकी कौशल, इनके संगीत की जो कौशल थी, इस बात की जीती जागती मिसाल है कि गुणवत्ता संख्या बल से कहीं आगे होती है, जो हर दिल पर राज कर जाती है। और ये उनमें से एक प्रसिद्ध संगीतकार रहे। हमारे साथ जुड़े हैं बहुत सारे हमारे श्रोता, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो सुनते हैं ये अगला नगमा इनके प्यारे से गीत के साथ।

जी नौशाद जी का जन्म 25 दिसंबर 1919 को लखनऊ में मुंशी वाहिद अली जी के घर हुआ। 17 साल की उम्र में ही वो अपनी किस्मत आजमाने मुंबई कूच गए थे। शुरुआती संघर्षपूर्ण दिनों में उन्हें उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां और उस्ताद झंडे खां और पंडित खेमचंद्र प्रकाश जैसे गुणी उस्तादों की सोहबत नसीब हुई। और हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अविराज सिंह जी ने हमें मैसेज किया है और राजेश वर्मा जी ने भी हमें मैसेज किया और सुदर्शन मुखी जी ने तो हमें मैसेज करके सही जवाब दिया। राजकुमार दूदी जी ने भी हमें गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार हुडी, प्रमोद कुमार हुडी जी ने, और इसी तरीके से शमशाद बेगम जी हिंगोली महाराष्ट्र से, शाह जी, श्रीमती नंदा बोखड़े, हनुमान बोखड़े बोड़खे, उत्तम जमदाड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मैसेज करने के लिए। और सुनते हैं हमारा अगला ये नगमा।

हाँ, जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आपकी सुन रहे हैं एक ही कलाकार, और हम कलाकार लेकर आए हैं नौशाद साहब जी, जिनकी आज पुण्यतिथि है। और इस कार्यक्रम में आज आपके साथ हमेशा की तरह परिकल्पना करवाती है आपकी दोस्त और होस्ट रैना दवर। दोस्तों, नौशाद जी को पहली बार स्वतंत्र रूप से 1940 में प्रेमनगर में संगीत देने का मौका मिला, लेकिन उनकी असली पहचान बनी 1944 में प्रदर्शित हुई रत्न से, जिसमें जोहरा बाई अनबोल वाली अमीर बाई कर्नाटकी, करण दीवान और श्याम के गाए गीत बहुत लोकप्रिय हुए। और बस यहीं से शुरू हुआ कामयाबी का एक ऐसा सफर जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। और हमें इसी तरह से बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, जो हम खुश नसीब हैं कि आप सब हमें मैसेज कर रहे हैं और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। चिरमई कुरासिया कालरी से इंद्रभान, अनुभव सिंह, ऋषभ, राम सरोहर, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद और कालिंदी लहरे। और उसी तरीके से हमें जसबीर सिंह जी ने भी मैसेज किया है, अरोड़ा जी ने, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर ने भी हमें मैसेज किया है। इशक मोहम्मद जी ने भी हमें मैसेज किया है, और आफरीन कौसर, खतीजा बेगम और नीलोफर फातिमा, पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम में। और अब हम बता रहे हैं, जिस तरह से बातें कर रहे हैं, तो एक सॉन्ग तो बनता है।

जी हाँ, हम भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं, और देखो हमारे श्रोता भी हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं कि सभी हमें मैसेज कर रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं, और हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है वो भी हमें लिखकर भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमें हीरामणि वर्मा जी भेज रहे हैं, भाटापारा से मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चिरमणि कुरासिया कालरी से इंद्रभान, अनुभव ऋषभ, राम सरोहर सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे ने भी हमें मैसेज किया है। और पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से मुकेश जी, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और अंकुर राघा गुप्ता जी हमें मैसेज कर रहे हैं। और इस तरीके से लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप और गुरनूर सिंह और गुरनाल सिंह और अविराज सिंह जी ने भी हमें मैसेज किया है। धर्मेंद्र छिप्पा जी ने भी हमें मैसेज किया, कपिल छिप्पा, ईशान छिप्पा और पूजा परिहार, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही कलाकार आज चर्चा इस कार्यक्रम को बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं नौशाद जी की, तो अंदाज आन मदर इंडिया, अनमोल घड़ी, बेजो बावरा, मुगले आजम, दिल लगी धर्म कांटा, पाकिजा साज और आवाज, गंगा जमुना, राम और श्याम, मेरे महबूब, और ना जाने ऐसी कई खूबसूरत फिल्मों में उन्होंने अपने संगीत का जादू ऐसा बिखेरा कि लोग आज भी

ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि नौशाद साहब न केवल एक संगीतकार थे बल्कि एक शायर भी बसता था और उनका दीवान आठवां सुर नाम से प्रकाशित हुआ। उनका लखनऊ से बेहद लगाव था, इससे उनकी खुद की इन पंक्तियों से समझा जा सकता है। पंक्तियां हैं, रंग नया है लेकिन घर ये पुराना है, ये कोचा मेरा जाना पहचाना है, क्या जाने क्यों उड़ गए पंछी पेड़ों से, भरी बहारों में गुलशन वीराना है।

और हमारे पास बहुत सारे मैसेज, मेरठ से दर्शन और कविता गौड़ जी का हमें मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप मक्कर जी ने हमें पंजाब से, जलंधर से मैसेज किया है।

स्वर्ण सिंह जी पंजाबी नावलकर और धर्मेंद्र छिप्पा प्रकाश वर्मा जी ने हमें मैसेज किया है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस वर्मा निखिल यशस्वी। और उसी तरीके से संदीप मक्कर जी मन्नत वही गांव फरासी जिला हिसार से, राजकुमार हुड्डी प्रमोद कुमार जी, सुदर्शन मुखी, अनीता सिमरन शांतिनगर से, और संदीप मक्कर जी का फिर, और ऋषि कपूर संजय साहू पोटिया कलादुर से, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मैसेज करने के लिए। और हमारा समय अब कह रहा है कि अलविदा लेना पड़ेगा। तो 5 मई आज के दिन सन 2006 को इन दुनिया को अलविदा कह गए नौशाद साहब को हमारा शत शत नमन। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी, खुश रहे, मुस्कुराते रहे और एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छे नागरिक बने। घटना स्थल पर घटनाएं पीड़ित की वीडियो ना बनाकर बेहतर रहेगा कि उसकी मदद करें, एक अच्छा काम करें जो दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कुराहट। तो जाते जाते राणा तंवर को दीजिए इजाजत, अगले कार्यक्रम किस्सों और गीतों के साथ सुनते रहे आपका अपना आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब समय हमारे अगले कार्यक्रम, स्पॉन्सर्ड NCERT कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है श्रोताओं आप सबका, विमलेश का नमस्कार कीजिए स्वीकार
0: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने लिखा है।
2: भीड़ में बच्चा जब तक अपनों का हाथ पकड़कर चलता है उसे मेला बहुत सुंदर और खूबसूरत लगता है, पर वही बच्चा अगर अपनों से बिछड़ जाए तो वही मेला उसे डरावना और नीरस लगने लगता है।
0: दुनिया के मेले में भी हम सब की स्थिति भी यही है। जब तक हम अपनों से जुड़े हुए हैं, उनका हाथ थामे हुए हैं, दुनिया हमें सुंदर लगती है। इसीलिए हमेशा अपनों का साथ और हाथ थामे रहिए।
2: जी, बहुत ही सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब सोशल मीडिया और आधुनिकता की दौड़ में लोग एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम अपने सामाजिक पारिवारिक ताने बाने को संभाल कर रखें। खासकर बच्चों और बड़े बुजुर्गों को जरूर समय दें।
0: अगला संदेश हमें मिला है मेन रोड तेल्हारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, कुमारी सुजाता पोहरकर का, लिखते हैं।
2: आदरणीय अजीत जी एवं विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। दिनांक 3 अप्रैल 2026 को प्रसारित हुआ

0: कार्यक्रम हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रभावशाली लगा। आयुर्वेद के इस गौरवशाली इतिहास और उसकी वैज्ञानिकता को साझा करने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद।
1: आपको भी धन्यवाद।
0: ऐसी जानकारी आसानी से नहीं मिलती। एनसीईआरटी उमंग की पूरी टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दिनांक 8 अप्रैल 2026 को प्रस्तुत आसमान गिरा, ये कार्यक्रम हमें बाल कथा के रूप में बेहद पसंद आया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए और हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। बच्चों के लिए इतनी सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अरे नगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी।
0: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने लिखा है। 3 अप्रैल को कार्यक्रम उमंग में वैद्यराज जीवक के बारे में जानकारी सुनने को मिली जो बहुत अच्छी लगी। आपका कार्यक्रम जानकारी से भरपूर होता है। उमंग परिवार के साथ लेखक और प्रस्तुतकर्ता को बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया और श्रीमती कल्पना चंसोलिया जी का।
0: कृष्णा पार्क दिल्ली से आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर, अकरम आसमा फकीर।
1: आपके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। आपसे निवेदन है इसी तरह से लिखते रहिए और सुनते रहिए हमारा आपका सबका चहेता कार्यक्रम उमंग। स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर सी कविता से।
0: जी अजीत जी, श्रोताओं जब ये कविता कही जाए तो आपको अंदाजा लगाना है कि ये कविता किस पर है। जल निधि चहुं ओर अपार, प्रकृति का ये कैसा विस्तार, दिखता नहीं है आर पार, लहरों में छिपा अनंत संसार।
1: क्या बात है, दिखता नहीं है आर पार, लहरों में छिपा है अनंत संसार। और आगे लिखा है गहराई इसकी अति गंभीर, रहस्य भरे इसमें शरीर, जीवों का अद्भुत परिवार, सृष्टि का ये अनुपम उपहार।
0: तो श्रोताओं लगा कुछ अंदाजा?
1: जरूर लगा लिया होगा। यदि आपका अंदाजा समुद्र है तो श्रोताओं आप बिल्कुल सही हैं। श्रोताओं इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे समुद्र और उसके रहस्यमय दुनिया की। तो आइए जानते हैं समुद्र की कुछ रोचक बातों को।
0: तो अजीत जी पहला प्रश्न ये उठता है कि समुद्र या सागर क्या है?
1: विमलेश जी, कहा जा सकता है कि समुद्र पृथ्वी पर फैला हुआ विशाल खारे जल का क्षेत्र है।
0: जी,
1: पृथ्वी का लगभग 71% भाग समुद्र से ढका हुआ है।
0: जी,
1: लेकिन विमलेश जी एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है।
0: वो क्या?
1: वो ये है कि कुछ लोग इसे समुद्र कहते हैं तो कुछ इसे सागर कहते हैं।
0: जी,
1: लेकिन महासागर भी तो हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि सागर और महासागर में क्या अंतर है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न अजीत जी। देखिए, पहली बात है आकार या क्षेत्रफल। सागर आकार में छोटा होता है जैसे अरब सागर, और महासागर बहुत विशाल होता है जैसे प्रशांत महासागर।
1: जी, तो मुझे लगता है कि स्थिति या लोकेशन भी मायने रखती है।
0: जी,
1: जैसे महासागर पृथ्वी के बड़े और खुले हिस्सों में फैले होते हैं जबकि सागर अक्सर महाद्वीपों के बीच होते हैं।
0: जी अजीत जी, एक और महत्वपूर्ण बात और वो है गहराई। महासागर अधिक गहरे होते हैं जबकि समुद्र या सागर थोड़े कम गहरे होते हैं। वैसे ध्यान से देखा जाए तो सभी सागर अपवादों को छोड़कर महासागरों से जुड़े होते हैं।
1: विमलेश जी, इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का सागर हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब जानते हैं कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं। आपसे शुरू करें।
1: जी, प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा और गहरा महासागर है।
0: जी,
1: दूसरा है अटलांटिक महासागर, ये यूरोप और अमेरिका को अलग करता है। अब आपकी बारी है।
0: और तीसरा महासागर है हिंद महासागर, ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। और ये सभी महासागरों में सबसे गर्म माना जाता है। फिर चौथा है दक्षिणी महासागर, ये अंटार्कटिका के पास है, इसे अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं।
1: और पांचवा महासागर है आर्कटिक महासागर, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे छोटा महासागर है। आपको विशेष रूप से बता दें कि विश्व व्यापार का सबसे बड़ा माध्यम महासागर और समुद्र ही हैं।
0: तो श्रोताओं ये थी आज की जानकारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से प्रश्न है।
1: तो प्रश्न है पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
1: श्रोताओं 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: जी,
0: इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है माय नेम।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक एक पाठ पर आधारित है जिसमें एक मक्खी अपना नाम भूल जाती है। करती है। वो कई पशु पक्षियों के पास जाती है और अंत में बड़े मजेदार ढंग से उसे अपने नाम का पता चलता है। लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं।
2: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.
3: Ant, do you know my name? I don't know. You may ask the tree I climb. Dear tree, do you know my name?
4: I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade.
2: The fly went near the cow and asked,
3: Dear cow, do you know my name? I don't know. You may ask the grass I ate.
2: The fly went to the grass and asked,
3: Dear grass, do you know my name?
5: I don't know. You may ask the leaves fallen on me.
2: The fly asked a leaf fallen on the grass.
5: Dear leaf, do you know my name?
2: The leaf was about to answer when the wind blew. The leaf began to fly. Seeing this, the fly remembered his name.
3: My name is Fly.

0: What do you hear?
1: Can you recognize the sounds?
0: Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम माय नेम और अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: मौलाना अबुल कलाम आजाद।
2: ये कार्यक्रम भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के जीवन और देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की जानकारी देता है।
4: मौलाना अबुल कलाम आजाद।

0: मौलाना अबुल कलाम आजाद की। सन 1888 में उनका जन्म मक्का में हुआ। उनके बचपन का नाम गुलाम मुहीउद्दीन अहमद था और आजाद बाद में उनका तखल्लुस यानी उपनाम बना।
1: उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन बहुत बड़े विद्वान और धर्मशास्त्री थे। उनकी वालिदा आलिया बहुत नेक और रहम दिल थी। वे मदीना के प्रसिद्ध विद्वान की पुत्री थी। बालक अबुल कलाम को पढ़ाई का माहौल विरासत में मिला। उनके जन्म के कुछ साल बाद उनके वालिद को एक दुर्घटना में चोट लग गई। वे इलाज के लिए कलकत्ता आ गए और कलकत्ता में ही बस गए। अब सवाल बालक अबुल कलाम की शिक्षा का था, तो उनके पिता ने उन्हें घर पर ही शिक्षा दिलवाई। मजहबी परिवार में पैदा होने की वजह से दीनी तालीम पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया।
2: मेरा सपना है मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा और मजहबी इंसान बने। मुझे यकीन है मेरी परवरिश और उसको मिली तरबियत एक दिन जरूर रंग लाएगी। वो बड़ा होकर मेरे सपने को साकार करेगा।
1: पर बालक अबुल कलाम के बचपन के खेल तो निराले हुआ करते।
3: इसको इधर लगा देता हूँ।
4: अरे ये क्या कर रहे हो अबुल? हाँ? ये सारे बक्से एक लाइन में क्यों लगा दिए?
3: रुको, मैं अभी अम्मी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। जब मार पड़ेगी ना तब पता चलेगा तुम्हें।
5: ना ना, ऐसा ना करना फातिमा आपा। ये तो रेलगाड़ी बनाई है।

0: भूल गई, मैं भाषण दे रहा हूँ।
1: अच्छा, तो ये बात है।
2: उनका बचपन दूसरे बच्चों से अलग था। उनके खेल इस तरह के हुआ करते कि उनके घर वाले भी
3: भाई की तरफ रुझान बढ़ता गया। नतीजा ये हुआ कि उनके शौक को देखकर उनके पिता ने कई अध्यापक रख दिए। ये सभी अध्यापक उन्हें अलग अलग विषय पढ़ाया करते। अबुल कलाम बड़े मेहनती छात्र थे। 16 वर्ष की आयु में ही अनेक विषयों का गहन अध्ययन उन्होंने पूरा कर लिया। इसी उम्र में अन्य विद्यार्थियों को दर्शन शास्त्र, गणित और तर्क शास्त्र पढ़ाकर उन्होंने अपनी योग्यता दिखा दी।
2: उनकी शिक्षा धार्मिक वातावरण में पुरानी परंपरा के अनुसार हुई। इस बीच उन्हें कुछ ऐसे लेख पढ़ने को मिले जिन्हें पढ़कर उन्हें यह महसूस हुआ कि आधुनिक विज्ञान और समाज शास्त्र पढ़ना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने अंग्रेजी सीखनी शुरू की और जल्द ही विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ने लगे। वे 14 साल की उम्र से ही शेर कहने लग गए थे। वे बहुत कम उम्र से ही आजादी के आंदोलन से प्रभावित हो गए थे। परंपरागत रूढ़ियों के विरुद्ध मौलाना के मन में विचारों का संघर्ष आरंभ हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना रास्ता खुद बनाएंगे। इसी समय उन्होंने अपने नाम के साथ आजाद लगाने का निश्चय किया और वे मौलाना अबुल कलाम आजाद कहलाने लगे। वे बहुत अच्छे लेखक और वक्ता थे, इसलिए उन्होंने अपनी कलम के सहारे देश की जनता को प्रेरित करने का निश्चय किया।
3: उन्होंने तर्जुमानुल कुरान किया। उनके कई लेख लाहौर के पैसा, लखनऊ के अल अवध और अमृतसर के वकील अखबारों में छपे। समय के साथ साथ उनके लेखों से लोगों के बीच उनकी शोहरत बढ़ने लगी।
2: बीसवीं सदी का आरंभ। देश में क्रांतिकारी आंदोलन जोर पकड़ रहा था और बंगाल इसका मुख्य केंद्र था। अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा करके इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन करने का निश्चय किया। पूरे देश में जमकर विरोध हुआ। इसी बीच मौलाना आजाद बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और उनकी सहायता की। वे चाहते थे कि मुसलमान स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और अंग्रेजी शासन समाप्त करने की भरपूर कोशिश करें।
3: मौलाना के मन में ये विचार जमता चला गया। उन्होंने अनुभव किया कि भारतीय मुसलमानों को आजादी के आंदोलन से जोड़ने और जनमत तैयार करने के लिए एक अच्छा उर्दू पत्र निकालना जरूरी है। अल हिलाल पत्र का जन्म इसी निश्चय का सुफल था। अल हिलाल को लोकप्रिय बनाने के लिए उसमें बेहतर से बेहतर पठनीय सामग्री का समावेश किया गया और उसके गेटअप को भी उतना ही खूबसूरत बनाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि अल हिलाल उर्दू पढ़ने वालों का सबसे प्रिय पत्र बन गया। ये थी कुशल पत्रकार के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जोरदार सफलता। अल हिलाल का निकलना था कि उर्दू पत्रकारिता के इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। लोगों में क्रांति की लहर दौड़ गई। ये अखबार इतना मशहूर हुआ कि 3 महीने में ही सभी पुराने अंक दोबारा छापने पड़े, क्योंकि लोग दोबारा उसे शुरू से पढ़ना चाहते थे। अल हिलाल के जरिए क्रांति की जो आवाज उठी, उससे ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई और वो

0: जब्त कर लिया गया। तब अबुल कलाम ने दूसरा पत्र अल बलाक 1915 ईस्वी में प्रकाशित करना शुरू कर दिया।
1: ब्रिटिश सरकार ने समझ लिया कि इसके जादू का जोर प्रेस एक्ट का सहारा लेकर नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि अल बलाक की भी वही शान थी। अप्रैल 1916 में मौलाना को कलकत्ता छोड़ देने पर मजबूर कर दिया गया। पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौलाना के प्रवेश पर पहले ही पाबंदी लग चुकी थी। वे कलकत्ता से रांची आ गए। 6 महीने बाद ही वहां उन्हें नजरबंद कर लिया गया और वे 3 साल बाद छूटे। रांची की कैद ने मौलाना को अब राजनीति के क्षेत्र में पूरी तरह उतार दिया और वे कुशल पत्रकार, पूरे देश के चहेते नेता बनकर उभरने लगे थे।
0: जेल से छूटने के बाद मौलाना कुछ दिनों तक तो सारे देश के दौरे में लगे रहे और तभी वे गांधी जी से मिले। गांधी जी तो उनसे पहले से ही मिलना चाहते थे। पूरे देश में असहयोग आंदोलन की एक आग सी फैल रही थी। मौलाना आजाद अब पूरी तरह राजनीति के क्षेत्र में उतर आए थे। भारतीय जनता को जगाने, विशेष रूप से मुसलमानों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रोष पैदा करने का अब एक विशेष अवसर हाथ लगा था। उन्हें प्रकृति ने लेखन शक्ति और वाक शक्ति दोनों उच्च कोटि की दी थी।
2: स्वराज उस समय तक निरर्थक है जब तक ये गरीब और अमीर के अंतर को नहीं मिटाता, और मेरे विचार से खादी का आम व्यवहार ही ये अनुभूति उत्पन्न कर दे कि हम भी इन लाखों गरीब भाइयों में से हैं जो इस देश में बसते हैं। क्या हमारी इच्छा नहीं कि हमारे बदनसीब भाई हमारे कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें और स्वतंत्रता प्राप्ति से आनंद विभोर हों?
0: सितंबर 1923 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता के लिए मौलाना का नाम आया। मौलाना की उम्र उस समय केवल 35 वर्ष की थी, जो अब तक के अध्यक्षों को देखते हुए काफी कम उम्र थी। 1923 में वे पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और खुशकिस्मती से 1940 में दोबारा यही पद उन्हें हासिल हुआ। इस बार वे 6 साल तक अध्यक्ष रहे। कांग्रेस का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड यानी संसदीय समिति बनी। वे उसके सदस्य घोषित किए गए। उनके जिम्मे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिंध और सीमांत प्रांत के संसदीय मामले थे। उन्होंने उन मामलों को बखूबी सुलझाया। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ही मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था,
2: आज भारत में न किसी हिंदू संगठन की जरूरत है न मुस्लिम संगठन की, हमें केवल एक संगठन की जरूरत है और वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस।
0: मौलाना आजाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सभी प्रांतीय नेताओं से मिलते रहे। भारत छोड़ो आंदोलन जोरों से शुरू हो गया था। हजारों लोग गिरफ्तार हुए। मौलाना को भी 8 अगस्त 1942 को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और वे 1945 तक जेल में रहे।
1: भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी पत्नी का देहांत हो गया, मगर वे इस दुख को सब्र के साथ सह गए। उन्होंने उस गम को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया।
0: उनका चरित्र आदर्श था। एक जगह उन्होंने स्वयं लिखा है,
2: 1918 से जिन बातों का संकल्प लिया है उनमें से एक बात यह भी है कि मेरे खिलाफ चाहे कोई कितना कुछ क्यों न कहे या लिखे, अपने दिल में उसके लिए कोई शिकायत पैदा न होने दूंगा। अपना दामन कांटों से उलझाओ और जरूर उलझाओ, मगर इतनी सख्त बाकी रहे कि जब चाहो निकाल लो।
1: 15 अगस्त 1947, देश आजाद हुआ। आजाद भारत के वे पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने पुरुषों से ज्यादा महिला शिक्षा पर अधिक जोर दिया। उनका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य रहा ललित कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अकादमियों की स्थापना। उन्होंने साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना की और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने के लिए साधन उपलब्ध कराए। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के अनेक कार्यक्रम शुरू किए।
0: मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का गठन किया और खड़गपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना उनकी इस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इससे इंजीनियरिंग की उच्च व श्रेष्ठ शिक्षा के काम को बढ़ावा मिला।
1: ऐसी आला शख्सियतें बार बार जन्म नहीं लेती और उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी हम उन्हें कभी भूल नहीं पाते। मौलाना अबुल कलाम आजाद महान नेता, महान राजनीतिज्ञ, महान लेखक, महान वक्ता, सभी कुछ थे। उनमें एक साथ अनेक गुणों का समावेश था।
0: 22 फरवरी 1958 को इस महान देशभक्त का देहांत हुआ। वे अंतिम क्षणों तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। महात्मा गांधी ने कहा था,
2: मुझे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के साथ देशी और कौमी सेवा करने का गौरव प्राप्त है। इनकी राष्ट्रीयता उतनी ही दृढ़ है जितना उनका इस्लाम पर ईमान और

0: मौलाना अबुल कलाम आजाद, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर।
4: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप। ये आकाशवाणी का न्यूज।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम, उर्दू मजलिस।

है जिसे बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें। तकरीब की सदारत करते हुए वाइस चांसलर योगेश सिंह ने कहा कि टेक्नोलॉजी ने कुतुबखानों के अंदाज को जरूर तब्दील किया है मगर किताबों की अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। तरक्की के लिए मुताले की आदत को बरकरार रखना नागुजीर है। तकरीब में यूनिवर्सिटी के आला अफसरान, माहरीन तालीम, सरकारी शख्सियात और बड़ी तादाद में तलबा व तालिबात ने शिरकत की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय है अब हमारे हिंदी और अंग्रेजी समाचारों का।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल और आज मेरे साथ हैं
1: अमीषा पटेल।
0: और अमीषा, आज खास क्या है वो सबसे पहले अपने श्रोताओं को हम बता देते हैं। हर बार की तरह, रोज की तरह शुरुआत तो आईपीएल से ही होगी, क्योंकि आईपीएल के जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं रोमांच और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ कल के मुकाबले में हुई शानदार रन चेज, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि कल था मुकाबला।

मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच, और इसके अलावा आज शाम होने वाले मुकाबले के बारे में भी जानकारी देंगे जो सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में है। उसके बाद बात करेंगे एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप की जो उज़्बेकिस्तान में आयोजित हुई है, और ये 1 मई से 6 मई 16 मई के बीच खेली जाएगी। और एक्सपर्ट कितने खुश हैं अपने बॉक्सर्स के प्रदर्शन से वो भी आपको सुनवाएंगे। इसके अलावा शूटिंग की बात करेंगे, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शॉटगन जो कजाकिस्तान में आयोजित की गई है, 2 से 11 मई के बीच 125 टारगेट्स के बाद भारतीय शूटर्स की रैंकिंग की बात करेंगे। और निराशाजनक खबर ये है कि हमारे शूटर्स जो है क्वालिफिकेशन से चूक गए हैं। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 जो शंघाई में आयोजित किया गया है 5 से 10 मई के बीच, उसके क्वालिफिकेशन जो कंपाउंड आर्चरी है उसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। आईटीटीएफ वर्ल्ड टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप फाइनल्स लंदन में आयोजित हैं जो 28 अप्रैल से 10 मई के बीच वहां खेले जा रहे हैं, उसके बारे में भी जो टीम्स हमारी आज खेलेंगी उसके बारे में और किसके साथ खेलेंगी वो भी आपको हम बताएंगे। इसके अलावा AFC अंडर 17 विमेन एशियन कप का मुकाबला कार्यक्रम के दौरान ही चल रहा होगा जो भारत और जापान के बीच खेला जा रहा है, उस पर भी लाइव अपडेट आपको आज के इस कार्यक्रम में दी जाएगी।

0: जी हाँ, आईपीएल के इस सिग्नेचर ट्यून से आपको पता चल गया होगा कि आईपीएल की बात होने वाली है, क्योंकि कल था एक बड़ा मुकाबला, महामुकाबला भी कह सकते हैं, क्योंकि रन चेज जो था वो शानदार था और कुल रन जो दोनों टीम्स ने बनाए वो थे 457। बात कर रहे हैं कल खेले गए मुकाबले की, जो मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में मुकाबला था, और ये 47वां मैच था और मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 229 रन का लक्ष्य मात्र 18.4 ओवर में पूरा कर लिया, जो कि आईपीएल में उनका सबसे सफल रन चेज है। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम एक समय 250 के पार जाने की स्थिति में थी, और लेकिन मध्य ओवरों में उनकी पारी लड़खड़ा गई, जिससे वे अंतिम ओवरों में तेजी से रन नहीं बना सके। फिर भी उन्होंने 228 रन बनाने में सफलता पाई, जो T20 में एक सुरक्षित स्कोर माना जाता है। हालांकि आईपीएल के सीजन में सबसे बड़े रन चेज को देखते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जीत को लेकर आश्वस्त नहीं थी और उनका यह डर सही साबित हुआ, और मुंबई इंडियंस ने लक्ष्य को 8 गेंदे शेष रहते हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 84 रन बनाए तो रयान रिकल्टन ने 83 रन बनाए, और उनके मध्य पहले विकेट के लिए बनाई गई 143 रनों की शानदार साझेदारी की मदद मुंबई इंडियंस के आईपीएल के 47वें मैच में जीत में बदल गई। लखनऊ सुपर जायंट्स 6 विकेट से हार गए और रोहित शर्मा अपने वही पुराने अंदाज में नजर आए और उसी अंदाज में बैटिंग करते नजर आए, चौके छक्के लगाते नजर आए, और उनके साथ पार्टनरशिप थी रयान रिकेल्टन की। क्या कहते हैं रयान अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में और इस रनचेज के बारे में, आइए सुनते हैं।
1: It's never over. Mumbai Indians is full of class players. Class always does return. The cream does rise. Yeah, really enjoyable opening with Roe. He's obviously had a bit of time off. So, you know, as a player, you know, if you have time off to find your groove as quickly as he did is obviously something very impressive. He knows this game incredibly well. And see him roll back the years with a lot of those shots over extra cover, and his pickups was, yeah, really nice to stand at the other end. I think we complement each other quite nicely. We dovetail quite well. Yeah, always enjoy batting out here with him, and hopefully we can have many more fruitful returns. You know, we're chasing a big score. You kind of have to get going. But I think the beauty of it is that you can work your game around. Sometimes I go aerial, he goes on the ground through his, you know, his natural flair through extra cover and the ability to hit the offside. It's classy watching him bat. I really enjoy, you know, spending time out there in the middle, and what a place to play, to bat in the top in the first six at the Wankhede, when the wicket's been generally quite good this year. I wouldn't want to be anywhere else. So yeah, really happy with our returns, and hopefully, like I said, we can keep going. So as a team, we always want to, you know, represent the franchise incredibly well, represent ourselves and our teammates well too. So it's never over. Mumbai Indians is full of class players. Class always does return. The cream does rise, and like I said, there's a lot of cream in this change room. So

0: We're always trying to, you know, get better, try, you know, give ourselves half a chance if there is a chance to have, but just enjoy playing with each other, keep trying to get better and keep, you know, representing the union and make sure that we, you know, get a few more wins this season.
1: टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स ने निकोलस पूरन की धमाकेदार पारी के दम पर 228 रन बोर्ड पर लगाए और पूरन ने 21 गेंदों पर 63 रन बनाए. वहीं मार्श ने 44 रनों का योगदान दिया. इस स्कोर का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन की जोड़ी ने इस लक्ष्य को पार कर लिया और नमन धीर ने 12 गेंदों में नाबाद 23 रन बनाए और विल जैक्स ने 4 गेंदों पर नाबाद 10 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई. मुंबई ने 8 गेंदे और 6 विकेट रहते ये मैच जीत लिया और 22 गेंदों में मुंबई इंडियंस के रियान रिकल्टन ने अर्धशतक जड़ा जो कि काफी अच्छा स्कोर माना जाता है और 27 गेंदों में रोहित शर्मा ने 50 लगाया और ये रोहित शर्मा का 49वां अर्धशतक था. टर्निंग पॉइंट्स की बात करें तो लखनऊ ने अंतिम 3 ओवरों में सिर्फ एक बाउंड्री लगाई यानी कि मात्र एक चौका अंतिम 3 ओवरों में, वरना एक समय ऐसा था जब 250 का स्कोर दिख रहा था क्योंकि प्रोजेक्टेड स्कोर आजकल जो है बहुत चलन में है और प्रोजेक्टेड स्कोर पर नजर रखते हैं जिसको अनुमानित स्कोर भी कहते हैं और उससे जो है अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीम अगर पावर प्ले में ऐसा अच्छा कर रही है तो आगे जाके उनका स्कोर अच्छा होने वाला है. और इसके अलावा बुमराह की अगर बात करें तो मुंबई के जसप्रीत बुमराह एक बार फिर बिना विकेट के वापस लौटे हुए. सत्र के 10 मुकाबलों में यह 7वां ऐसा मैच था जिसमें वह खाली हाथ रहे. मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2026 में अभी 4 और मैच खेलने हैं और एमआई का अगला मैच डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से 10 मई को है. इसके बाद टीम पंजाब किंग्स से 14 मई को और कोलकाता नाइट राइडर्स से 20 मई और राजस्थान रॉयल्स से 24 मई को भिड़ेगी. तो ये तो था कल खेले गए मुकाबले का विस्तार से जानकारी और आज शाम होना है दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में मैच. और दिल्ली कैपिटल्स अपने घरेलू मैदान पर लगातार 3 हार झेलने के बाद जीत की तलाश में है और विस्तार से जानकारी के लिए चलते हैं अमीषा के पास. आइए सुनते हैं वो क्या बताती हैं.
2: जी बिल्कुल दीपिका जी, 5 बार की जो चैंपियन है हमारी चेन्नई सुपर किंग्स, उनका 2026 का जो शुरुआत है वो काफ़ी मुश्किल रही है. लेकिन पिछले कुछ मैचेस में जो उनके मैचेस रहे हैं पिछले कुछ, वो काफ़ी अच्छे रहे थे. उन्होंने पिछले 6 मैचों में 4 जीत हासिल करके अपनी लय मजबूत कर ली है. मुंबई इंडियंस पर बड़ी जीत के बाद वे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उनके घर के बाहर जाने वाले मैच में भिड़ेंगे. यह मुकाबला मंगलवार यानी आज 7:30 बजे भारतीय समय अनुसार अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होगा. डीसी का जो ये प्रदर्शन है वह भी अब तक कुछ लयबद्ध नहीं रहा है, लेकिन वे राजस्थान पर रिकॉर्ड जीत हासिल करके आ रहे हैं. डीसी ने आईपीएल में अपना अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया जिसमें केएल राहुल, पथुम निसंका और मिचेल स्टार्क ने अहम भूमिका निभाई. लुंगी एंगीडी के डीसी की टीम में वापसी करने की उम्मीदें अभी भी जाहिर हैं जिससे उनकी गेंदबाजी जो है और मजबूत हो सकती है. सीएसके के जो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हैं उनकी फॉर्म अभी हाल फिलहाल में अच्छी नजर आ रही है और उनकी जो बल्लेबाजी है वह भी धीरे धीरे लय में आने लगी है. और अगर हेड टू हेड की बात करें तो आईपीएल में ये दोनों टीमें अब की 32 बार एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं और जिसमें से चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 मैच जीते हैं जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने 12 मैच जीते हैं. वहीं पिच रिपोर्ट की बात करें तो अरुण जेटली स्टेडियम की जो पिच है वह बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है. परंपरागत रूप से नई गेंद से इस पिच पर सीम मूवमेंट देखने को मिलती है. यहां उछाल अच्छा है और गेंदबाजों को थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. गेंद बल्ले पर आसानी से आती है यहाँ पर और कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि इसी मैदान में पंजाब ने आईपीएल का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया था, जो दर्शाता है कि यह विकेट बल्लेबाजी के लिए कितना मददगार है. और स्क्वायर जो बाउंड्री है वह भी छोटी है और आउटफील्ड में गेंदें तेज आती हैं. दूसरी पारी में ओस की भी संभावनाएं बताई जा रही हैं, इसलिए यहाँ पे लक्ष्य का जो

0: बचाव करना काफी मुश्किल हो सकता है।
1: और साथ ही साथ ये भी बताते चले कि दोनों टीमों के लिए मैच बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैच जीतने वाली टीम सीधे टॉप फोर की रेस में मजबूत हो सकती है, यानी ये मैच प्लेऑफ की दिशा तय कर सकता है। और अगर दोनों टीमों के मोमेंटम्स की और टीम फॉर्म्स की अगर बात करते हैं, दिल्ली कैपिटल्स की टीम थोड़ी इनकंसिस्टेंट रही है, लेकिन केएल राहुल शानदार फॉर्म में है, गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क और एंगिडी की वापसी से मजबूती आ गई है, और दिल्ली कैपिटल्स की ताकत की बात करें तो टॉप ऑर्डर बैटिंग और पेस अटैक काफी अच्छा है। चेन्नई सुपर किंग्स धीरे धीरे फॉर्म पकड़ रही है, ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन जैसे बल्लेबाज की रोल में जो है अपना बड़ा जो है अपना किरदार निभा सकते हैं, और सीएसके के बात होती है तो एमएस धोनी की भी बात जरूर होती है, और कयास लगाए जाते हैं कि शायद इस बार एमएस धोनी दिखेंगे, पर इस बार भी उम्मीद नहीं है उनके खेलने की। तो बाकी का जो इस मैच के प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी आपको कल के खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में हम जरूर देंगे। और अब नजर डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल पर, तो पॉइंट्स टेबल पर सबसे टॉप पर बनी हुई है पंजाब की टीम, जिन्होंने 9 मैच खेले हैं और 6 जीते हैं, 2 हारे हैं, 1 रद्द हुआ है, और 13 अंक के साथ सबसे ऊपर है। 12 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है बेंगलुरु की टीम, ये भी 9 मैच खेल चुकी है और 6 मैच जीत चुकी है। हैदराबाद की टीम 12 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है, 10 मैच खेल चुकी है, 6 जीत चुकी है। राजस्थान की टीम भी 12 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर है, जो 10 मैच खेल चुकी है और 6 जीते हैं। गुजरात की टीम 10 मैच खेल चुकी है, 12 पॉइंट्स के साथ पांचवें स्थान पर है, और चेन्नई की टीम 9 मैच खेल चुकी है, 8 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर है। दिल्ली की टीम 9 मैच खेल चुकी है, 4 जीते हैं जिसमें से 8 पॉइंट्स के साथ सातवें स्थान पर हैं, और सबसे नीचे है कोलकाता, मुंबई और लखनऊ की टीमें।

0: और अब आईपीएल के बाद बात कर लेते हैं एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप की, जो ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया है 1 से 16 मई के बीच। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए चलते हैं अमीषा के पास।
1: जी, तो अब हम चलते हैं ताशकंद में, जहां एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का रोमांचक आगाज हो चुका है। हमारे देश के बालक और बालिकाओं ने रिंग में अपना पूरा जोर लगाया है। तो एट प्रेजेंट जो रिंग का हाल कुछ इस तरह है, बालकों की अंडर 17 यानी अंडर 17 प्रतियोगिता में फ्लाई वेट 50 kg में यश यादव ने तुर्कमेनिस्तान के सुलेमान अहमदोव को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से शिकस्त दी। वहीं लाइट वेट 60 kg से एक और बड़ी खबर कारुंग एल्बर्टसन कॉम की तरफ से आई, जिन्होंने तजाकिस्तान के अली नाजरोव को 4-1 से हराकर जीत दर्ज की। वहीं लाइट बैंटम वेट 52 kg की बात करें तो गोपाल रामेश्वर गणेशे ने तजाकिस्तान के नाजरोव दमीर को कड़ी टक्कर दी और वह 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से यह मुकाबला हार गए। वहीं फेदर वेट 57 kg में प्रशांत मिश्रा का मुकाबला चाइना के तैनजिंग लियू से था, जहां उन्होंने 5-0 से उनको हार का सामना करना पड़ा। वहीं बालकों के अंडर 15 मैच की बात करें तो वेट कैटेगरी 46 में इंडिया के मैतेई ओइना ने जबरदस्त शुरुआत की और किर्गिस्तान के अब्दुर अखमान को 5-0 से एक तरफा फैसले से हराकर अगले राउंड में जगह बनाई। वहीं वेट कैटेगरी 49 kg के मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले में भारत के

0: नाम और पता बताएं।
1: मेरा नाम मोहर सिंह है जी, बुलंदशहर से बोल रहा हूँ।
0: जी मोहर सिंह जी, क्या सवाल है आपका?
1: अभी अभी डॉक्टर साहब ने बात करी कि पीली पट्टी यूरिया की निशानी और ऊपर की पट्टी उसकी क्या बताया उसका
0: सल्फर
1: नमक के लिए, सल्फर
0: सल्फर।
1: सल्फर की। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी पहचान बताई। दूसरी एक बात और सर, कि
0: जी
1: डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि दो फर्टिलाइजर एक साथ मिला के ना डालें, तो क्या हम यूरिया और डीएपी मिला के डाल सकें ना डाल सकें खेत में?
2: देखिए, ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई है। और देखो यूरिया क्या होता है, अगर यूरिया को डीएपी में मिलाओगे ना, ये पानी छोड़ देगा यूरिया, और आप बखेर नहीं पाओगे, थोड़ी सी बीच में ही वो एकदम पानी बन जाएगा उसका, और डीएपी की अमोनिया बन के उसका लॉस हो जाएगा। और उसकी भी क्योंकि नाइट्रोजन है दोनों में, उसमें भी है 18% और 46% इसमें है, आपके नाइट्रोजन का नुकसान हो जाएगा, मत मिलाइए।
1: अच्छा,
2: और जो
1: अलग
2: मैंने
1: अलग बखेर में क्या,
2: हैं,
1: अलग अलग बखेर में हूँ मैं क्या, मिला के
0: हाँ
1: ना
0: अलग
1: डालूँ
0: अलग
1: क्या
0: डाल
1: अलग अलग
0: सकते हैं।
1: बखेर?
2: देखिए देखिए किसान भाई, हम एज ए वैज्ञानिक, हम आपको बखेरने की जो सलाह नहीं दे सकते, हम अपनी साइंटिफिक वैज्ञानिक विधि से बंधे हुए हैं। हमारी वैज्ञानिक विधि ये है कि अगर यूरिया को जो पूरे पूरी फसल में लगाया जाता है, उसकी एक तिहाई मात्रा आप देंगे बुआई के समय। आप गन्ने के बारे में पूछ रहे हैं ना?
1: हाँ, गन्ने के बारे में भी और भी फसल है
2: हाँ,
1: हमारे, लेकिन
2: औरों
1: मुख्य
2: में भी
1: फसल
2: मैं एक
1: फसल है जी।
2: जनरली रूल बता देता हूँ। दूसरा जो फास्फोरस
1: हाँ
2: है, देखिए
1: जी
2: किसान भाई, फास्फोरस जो होता है वो कभी भी बखेर के डालना नहीं चाहिए। हालांकि मैं जानता हूँ कि किसान सारे बखेर के डालते हैं।
1: हाँ, ज्यादातर बखेर के डाले जी।
2: हाँ, बखेर के डालने में नुकसान क्या है कि जो जो जो ये फास्फोरस है, ये मिट्टी में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, जहां पे भी पड़ जाएगा वहीं पड़ा रहेगा ये। और इसका उदाहरण आप ये देखोगे कि कुछ अगर कुछ किसान भाई अगर धान में ना, खड़े धान में भी डीएपी डाल देते हैं ऊपर से,
1: हाँ डाले जी।
2: उसको देखोगे आप, वो ऐसे के ऐसे वहीं दाने पड़े रहते हैं और सफेद सफेद हो जाते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा। किसान क्या कहता है, यार ये तो डीएपी नकली है। वो नकली नहीं है, उसकी नेचर है, पानी के साथ भी एक जगह से दूसरी जगह फास्फोरस नहीं जाता है। जबकि नाइट्रोजन, अगर थोड़ी सी भी नमी होगी जमीन में, बहुत थोड़ी सी, वो सब जगह फैल जाएगा इक्वली।

0: यूनिफॉर्मली।
1: अच्छा जी, अच्छा जी,
0: इस इसी नेचर को जो मैंने राइट मेथड कही थी, आपने उस पे जो है क्वेश्चन किया है उससे संबंधित, राइट मेथड ये है फास्फोरस की कि फास्फोरस हमेशा वहां डालना चाहिए जहां पे जड़ जाती हो पौधे की, जड़ जाती हैं बीज के नीचे। और इसीलिए हमारे बड़े बूढ़े जब हल से बोते थे तो नीचे खाद डालते थे, ऊपर बीज डालते थे।
1: पहले खाद डाला जाए।
0: तो ये है, बहुत ही बढ़िया आपने कही। और जो मैंने दो खादों की बात करी वो करी डीएपी और जिंक सल्फेट, ये अगर दोनों मिला दिए तो ना जिंक सल्फेट मिले आपकी फसल को और ना मिले फास्फोरस, क्योंकि दोनों मिलके एक जिंक फास्फेट बनाते हैं जो पत्थर होता है, और अच्छा। दोनों पत्थर मिलके दोनों पत्थर बन जाएंगे, कोई सा भी पौधे को नहीं मिलेगा,
1: कोई फायदा नहीं होगा।
0: ये है, ठीक है,
2: ठीक है।
1: डॉक्टर एक बात और बताओ, टाइम और बता दो, आपने टाइम के बारे में बताई कि दिन में सुबह या कौन से टाइम उसी से।
0: हाँ देखिए, टाइम का यूरिया का बता देता हूँ कि यूरिया सबसे ज्यादा भागदौड़ करने वाला तत्व है, तो यूरिया को जो आप हमेशा शाम के समय डालें। हाँ, शाम के समय जब धूप ठंडी पड़ रही हो, जब बिल्कुल मुलायम हो रहा हो वातावरण, बिल्कुल गर्मी जा रही हो, तब उसको डालें, जिससे कि पूरी रात मिलेगी उसको ठंडक मिलेगी। अगर उसे सुबह धूप में डाल देंगे उसकी सारी नाइट्रोजन बन के ऊपर उठ जाएगी।
2: ठीक है मोहर सिंह जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो,
3: नमस्ते सिनमन बाबू।
2: नमस्ते जी,
3: मैं डॉक्टर सितारे बिहार के वैशाली जिले से स्वागत करता हूँ।
2: जी आपका कार्यक्रम में स्वागत है डॉक्टर सितारे
3: जी। गन्ने के खेत में पानी बरसने से बहुत पानी लग गया, उसका क्या उपाय किया जाए?
2: अच्छा, गन्ने के खेत में पानी भर गया है
3: जी, अभी जो पानी बरसा है दो तीन दिन पहले।
2: जी जी जी,
0: पानी निकाल दो।
3: पानी निकालने का जरिया नहीं है सर जी, नीचे गड्ढा नहीं है।
0: गड्ढा नहीं है तो एक जो है, देखिए अगर निकास नहीं है पौधे में उसमें खेत में आपके, तो एक बोरिंग कर सकते हैं आप, उसमें उसको खुला छोड़ दीजिए, सारा पानी नीचे चला जाएगा।
3: सही सलाह के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ
0: जी। जी थैंक यू।
2: ठीक है, फोन करने के लिए डॉक्टर सितारे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिहार के सितारे
2: जी। डॉक्टर मलिक जी, जो हमारा सवाल था कि संतुलित उर्वरकों का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
4: बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, क्योंकि संतुलित उर्वरकों से किस प्रकार हम कोरिलेट करते हैं कि वो उत्पादन को प्रभावित करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि संतुलित है इसका मतलब है कि वे उस पौधे की पूरी ग्रोथ, जैसे हम नाइट्रोजन से शुरू करें, यदि आप बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही आप उस पौधे को देंगे तो वो पौधे की वृद्धि प्रॉपर पूरी संपूर्ण शारीरिक वृद्धि करेगा। इसी प्रकार यदि हम फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस रूट जोन डेवलप करने के लिए होता है, जड़ों का विकास करने के लिए होता है, और वो जितना हमें फास्फोरस पौधे को आवश्यक है जो उसकी रिकमेंडेड डोज है। किसान भाई
2: जी जी, हेलो
5: हेलो,
2: हाँ नमस्कार जी।
5: जी नमस्कार सर,
2: अपना नाम और पता बताइए।
5: जी सर, ग्राम गौर जामार जिला सागर मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर।
2: जी क्या सवाल है आपका?
5: सर सर से मेरा सवाल था जो पोषक तत्वों के बारे में बता रहे थे, मैंने ये सुना है कि गहरी जुताई अगर बार बार कराते हैं तो कार्बन की कमी हो जाती है, क्या ये सही है या फिर ये कोई मिथ है, जानना था।
0: ये देखो जी, इनका बहुत ही अच्छा प्रश्न है
2: जी,
0: और आपकी जो बात है ना बहुत ही अच्छी है और आपका ऑब्जर्वेशन बहुत सटीक है
5: जी सर।
0: देखिए आप अगर नमक लें एक चम्मच, उस नमक को एक किलो आटे में मिलाओ, ठीक है, उसमें एक एक नमकीन जितना भी होगा उसको देखो चख के, और फिर एक चम्मच नमक को एक कुंटल आटे में मिलाओ, उसे कम हो जाएगा कि नहीं?
5: बिल्कुल, तो स्वाद ही नहीं रहेगा फिर तो, उसमें कुछ भी
0: पता ही नहीं चलेगा,
5: होंठ के मुंह में जीरा जो बोलते ना वही होगा।
0: हाँ तो उसमें क्या है कि आपने जो आपके ऊपर की 6 इंच की मिट्टी है, 6 इंच की मिट्टी में ज्यादातर फसल की वो रहती हैं जड़ें। गन्ने की बात करें, गन्ने की जड़ें गहरी जाती हैं, लेकिन वो जब जाएंगी गहरी, जब गहरी जुताई होगी। जब आप गहरी जुताई करते हैं जो ऊपर का कार्बन है वो सारा नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, रहता तो उतना ही है, रहता तो

0: उतना ही है, लेकिन वो ज्यादा मिट्टी में मिल गया एक जगह पे कम मिट्टी हो जाती है, मतलब एक जगह पे कार्बन की मात्रा कम हो जाती है। समझ में आ गई? तो
1: जी।
0: जब भी गहरी जुताई करें तो खाद डालें खूब जम के, क्योंकि वैसे भी गहरी जुताई करोगे जड़ नीचे जाएंगी तो खाद भी तो होना चाहिए नीचे।
1: जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक जिज्ञासा और थी मेरी, जैसे जो जैविक खाद हम खरीदते हैं, मतलब देसी खाद या केंचुआ खाद, तो हर चीज का रेट और दाम होता है, क्या इनके भी कुछ ऐसे रहते हैं डिसाइड कि इस भाव से मिलना ही चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह अलग प्रकार से मिलता है, तो कुछ ऐसा इनका भी रहता है सर
0: भाई
1: कुछ?
0: देखिए, ऐसा है कि जो रेट फिक्स होता है, गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जो, एक गवर्नमेंट का तो रेट फिक्स रहता है जो अगर उनके आउटलेट है, और प्राइवेट में तो वो ये करते हैं उसका कि भाई मेरी अच्छा है तो मैं ज़्यादा पैसे लूंगा, मेरा कुछ वो है जिसका नहीं बिकता वो कम पैसे में। तो ये मार्केट ओपन है, ये कंट्रोल्ड मार्केट नहीं है। जैसे यूरिया सब जगह एक भाव में मिलेगा आपको, वो कंट्रोल है।
1: जी, तो लगभग जैसे गवर्नमेंट दाम है, तो 1 क्विंटल कैसा चलता केंचुआ खाद?
0: गवर्नमेंट ये तो देखिए, अलग अलग जो है आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग मिलेगा, आप अपनी जगह पे पता कर लीजिए।
1: हाँ जी सर,
0: ठीक है
1: धन्यवाद
0: विपिन जी, फ़ोन करने के लिए
1: जी,
0: आपका
1: धन्यवाद
0: बहुत
1: सर।
0: बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि उत्पादन पर क्या प्रभाव
2: क्या
0: पड़ता है
2: प्रभाव
0: संतुलित उर्वरकों का।
2: जी?
0: डॉक्टर साहब, एक किसान और हैं फोन लाइन पे, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: नमस्कार
0: हाँ जी नमस्कार जी,
1: जी, अशोक कुमार शर्मा कुठावली कोर्ट बुलंदशहर।
0: हाँ जी, अपना रेडियो सेट दूर कर लो या उसे धीमा
1: ठीक
0: कर
1: है साहब,
0: लो,
1: ठीक है जी, दूर कर दिया।
0: क्या सवाल है आपका अशोक कुमार जी?
1: सवाल मेरा ये है साहब, गन्ने में बुवाई के टाइम तो हम डीएपी नीचे डालते हैं, और गन्ना
0: जी
1: जब तैयार हो जाता है, बड़ा एक एक फुटका, 2 फुटका, 6 फुटका, तो
0: जी
1: उसके बाद भी डीएपी डालते हैं?
0: उसके बाद भी डीएपी डालते हो?
1: जी हाँ, यूरिया में मिला करके डालते हैं, तो उसका कितना बेनिफिट मिलता है डाई का, कितना नहीं मिलता? अच्छा,
0: देखिए अशोक,
1: दूसरा सवाल,
0: हाँ
1: एक मिनट, दूसरा सवाल मेरा ये है, धान में किस तरह से डीएपी डाला है, किस तरह धान में?
0: ठीक है, हम दोनों सवालों का जवाब देते हैं आपका। पहले का
1: धन्यवाद जी।
0: गन्ने की बात बताते हैं। पहले
1: जी
0: अगर आपकी जो टोटल जैसे 80 किलो आपको फास्फोरस देना पूरे गन्ने की फसल में,
2: जी आप बताइए, रेडियो पे सुन रहे
0: हाँ,
2: हैं।
0: और उसमें क्या किया आपने, जैसे आपने कहा कि आधा आपने दे दिया बुआई के समय गन्ने के सेट के नीचे, और दूसरी डोज आप देना चाहते हैं, तो देखिए अगर दूसरी देना चाहते हैं तो जो मिट्टी चढ़ाते हैं, मिट्टी चढ़ाने से पहले आप बीज खूड़ में डालिए और उसके बाद अच्छी तरह से मिट्टी चढ़ा दीजिए, तो उसमें फायदा आपको मिल सकता है। अगर आपने मिट्टी चढ़ाने के बाद में फिर ऊपर से डीएपी डालते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरा, धान में डीएपी कैसे डालें? देखिए प्रिंसिपल तो एक जैसा ही है कि जो आप जड़ों के नीचे होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि धान में उसकी वो करते हैं पडलिंग करते हैं जो आप गुड़ाई करते हो, तो उस समय फिर डीएपी जुताई करते समय या पडलिंग करते समय उसमें नीचे मिला दीजिए।
2: ठीक है अशोक कुमार जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और निश्चित तौर पे किसान जागरूक हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं और कार्यक्रम भी सुन रहे हैं।
0: जी
2: कुछ
0: जी
2: लोग जो फ़ोन मिला पा रहे हैं वो कर लेते हैं, लेकिन नहीं जो मिलाते हैं कार्यक्रम वो भी सुन रहे हैं।
0: जी
2: तो डॉक्टर साहब, हम कार्यक्रम को और जारी रखते हैं कि अपना जो
0: महत्व
2: आप सवाल आपसे किया था
0: जी
2: वो
0: जी जी
2: उसका
0: नहीं, वो बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि एक तत्व की पूर्ति कोई भी दूसरा तत्व नहीं कर सकता है, और जो शरीर निर्माण के लिए सारे पोषक तत्व चाहिए, 17 के 17 पोषक तत्व, वे पौधे को अपने अलग अलग रूप से ही प्रदान करने होते हैं, उसी से ही उसके शरीर का पूर्ण निर्माण होता है, चाहे वो जड़ क्षेत्र का हो, चाहे तने का हो, चाहे पत्तियों का हो, तो संपूर्ण निर्माण के लिए
3: ताकि उसमें जो फ्रूट का साइज है, फल का साइज है, पत्ती का साइज है, जो भी जिस फसल में डिजायरेबल होता है, जैसे हम गन्ने की बात करें तो गन्ने में हमें मेन है केंद का कि उसकी गन्ने की लंबाई अच्छी हो, गन्ने की मोटाई अच्छी हो, तो हर एक संदर्भ में उसका अलग अलग लाभ मिलता है। जैसे हम पोटास की बात करें तो जो अभी मैंने बताया था फास्फोरस रूट जोन के लिए, जड़ों के लिए है, तो पोटास पौधे में रोगरोधी क्षमता पैदा करने के लिए प्लस उसमें क्वालिटी है।

0: करने के लिए यदि हम अपने खेतों में पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारे खेतों में रोग आने की भी संभावना अधिक रहेगी, और दूसरा जो पौधे की वांछित वृद्धि है, वांछित लंबाई है और वांछित क्वालिटी है वो उसको प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए संतुलित उर्वरकों के साथ में जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हुए ही अप्लाई करना होगा। इसी से ही हमारी पूरी फसल, पूरी लंबाई, वांछित फल सहित वो हमें प्राप्त हो सकती है।
1: जी बिल्कुल, इसका मतलब ये हो गया कि संतुलित उर्वरकों का उत्पादन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों को यही सलाह है कि वो गन्ने में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। और अब बाद में मुलाकात होगी समाचारों के बाद।
2: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद।
3: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।
4: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 1,52,00,000 रुपए के आवंटन के साथ 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। इसमें किसानों के लिए कई बड़े फैसले शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने कपास उत्पादकता मिशन कपास क्रांति को स्वीकृति दी है।
6: 5,659 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसके तीन कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट रिसर्च, दूसरा प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना और तीसरा न्यू एज फाइबर्स के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है।
5: श्री वैष्णव ने बताया कि गन्ना सीजन वर्ष 2026-27 के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FPR को भी मंजूरी दी गई है। इससे करीब 32,00,000 किसानों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2 नई सेमीकंडक्टर इकाई को भी मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री JP नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। केरलम में कांग्रेस पार्टी में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। विधायक दल की आधिकारिक बैठक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पार्टी बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगी। पुदुचेरी में मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज पार्टी विधायकों की बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया बैठक में उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने कहा कि वोटों की हेराफेरी की गई है और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली हुई है। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि चाहे वो इस्तीफा दें या ना दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
7: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह में पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लेम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में 6ठे और दिल्ली 7वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम का अगला भाग।
1: तो किसान बहन भाइयों, राम राम। एक बार फिर स्वागत है हमारे फोन इन कार्यक्रम। आज हमारा विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। IPL की पॉलीहेलाइट।
1: किसान बहन भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला में। और हमारे आज का कार्यक्रम का विषय है संतुलित उर्वरक उत्पादन और गुणवत्ता दोनों कैसे बढ़ाएं गन्ने में।
2: तो हमारे श्रोताओं को पता है कि हमारा फोन इन कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन ये विषय उन लोगों के लिए है जो श्रोता हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं या थोड़ी सी देर कर दी है उन्होंने, पर कोई नहीं, उनको बता दें एक बार फिर संतुलित उर्वरक उत्पादन और गुणवत्ता दोनों कैसे बढ़ाएं। और विषय से संबंधित हमारे साथ स्टूडियो में आज आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक। आप प्रभारी हैं गन्ना उत्कृष्टता केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र बागपत। और
1: जो हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, मुख्य कृषि वैज्ञानिक है इंडियन पोटास लिमिटेड में। तो हमारे जो भी किसान बहन भाई हैं गन्ने से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, आप निश्चिंत होकर के फोन कर सकते हैं 0111-2342-1082 और 2342-1083 दोनों नंबरों पर, और गन्ने से संबंधित कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं।
2: जी बिल्कुल, दिल्ली से बाहर के श्रोता और मोबाइल से कॉल करने वाले श्रोता इन नंबर के आगे 011 जो कि दिल्ली का एसटीडी कोड है जरूर लगा ले। चलिए कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल, आइए चलते हैं उनके पास।
3: किसान भाइयों नमस्कार, एक बार पुनः कार्यक्रम में आपका स्वागत है।

0: है और डॉक्टर साहब आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
0: तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे गन्ना फसल में संतुलित उर्वरक प्रबंधन की,
1: जी
0: और गन्ना ही नहीं कोई भी फसल है अगर हम लगाते हैं उसमें संतुलित उर्वरक प्रबंधन करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें जो उत्पादन मिलता है अच्छी क्वालिटी का मिलता है।
1: जी बिल्कुल
0: लेकिन अगर उसे हम वैज्ञानिक तरीके से देखें
1: जी
0: तो किस तरीके से जो अच्छी क्वालिटी का मिलता है तो उसका अगर हम संतुलित उर्वरक प्रबंधन नहीं कर पाते हैं
1: जी
0: तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि हम यहाँ पर संदर्भ गन्ने के साथ में जोड़ते
0: जी
1: हुए
0: जी
1: चल रहे
0: बिल्कुल
1: हैं। तो यदि हम संतुलित उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जो हमारे किसान भाई आम तौर पर नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग कर देते हैं, तो उससे असंतुलन पौधे के अंदर डेवलप होता है, क्योंकि जो यूरिया है ये सेल डिवीजन को बढ़ाता है, पौधे की वनस्पतिक वृद्धि को अधिक करता है। किसान को लगता है कि उसके जो उत्पादन है वो बढ़ेगा, लेकिन उसके विपरीत प्रभाव क्या पड़ते हैं कि यदि वो उसमें यूरिया का अधिक प्रयोग करता है तो गन्ने की गिरने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। दूसरा, वहां पर उसके कीट और रोगों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, और एक एक एक तरीके का प्रकोप, एक तरीके का प्रभाव पौधे के ऊपर दिखाई दे रहा है कि वो ऊपर का वनस्पतिक भाग बढ़ा रहा है, क्योंकि वो नाइट्रोजन दे रहा है, वो सेल एलोंगेशन ऊपर के भाग में वनस्पतिक पार्ट को बढ़ा रहा है। उसी के पैरेलल यदि उसमें असंतुलन बना है तो रूट जोन उसका कमजोर रहेगा और ऊपरी भाग उसका ज्यादा होगा, तो वो पौधा गिर जाएगा और उसकी वनस्पतिक वृद्धि भी फिर उसके बाद रुक जाएगी। और यदि बैलेंस फर्टिलाइजर है तो उसमें उस दशा में क्या होगा कि बैलेंस का मतलब है कि आपने नाइट्रोजन से पौधे की ऊपरी वृद्धि बढ़ाई, फास्फोरस से आपने रूट जोन बढ़ाया, पोटास से आपने उसको ताकत दी, स्ट्रेंथनिंग दी, उसकी सेल्स में मजबूती दी, तो तब वो फिर तीनों प्रकार की चीजें उसको मिली है तो वो निश्चित तौर पर खड़ा भी रहेगा, वृद्धि भी ठीक करेगा और आप पौधे में किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं रहेगी। और हम केवल असंतुलन की बात करी हमने कि हमने नाइट्रोजन इस्तेमाल की, फास्फोरस और पोटाश इस्तेमाल कम किए या उतनी मात्रा में नहीं किए, तो निश्चित तौर पर पौधे में गिरने की प्रवृत्ति, और क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व तो है जो पौधे को अपटेक बढ़ाता है, पानी की मात्रा बढ़ाता है, जिससे कीट और बीमारियों का भी प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। ये एक उदाहरण है। इसी प्रकार यदि आप पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने खेतों में तो रोगरोधी क्षमता कम हो जाएगी, दूसरा क्वालिटी डाउन जाएगी, केन की क्वालिटी। यदि आप अपने खेतों में पोटास इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसमें दोनों तरीके से गन्ने का वजन भी कम प्राप्त होगा, और दूसरा शुगर इंडस्ट्री को रिकवरी भी प्राप्त कम होगी, क्योंकि उसमें सब सॉलिड्स जो उसके अंदर क्रिस्टल बनते हैं वो भी नहीं बन पाएंगे। अब क्रिस्टल नहीं बनेंगे तो वजन नहीं होगा, वजन नहीं होगा तो गन्ने का उत्पादन उस लेवल का, देखने में फोलियज अच्छा रहेगा लेकिन उत्पादन उस दृष्टि से उस वजनदार स्थिति में वहां नहीं मिल पाएगा। दूसरा
0: डॉक्टर
1: जी
0: साहब मैं बीच में रोकना चाहूँगा, एक
1: जी
0: किसान भाई का फोन लेते हैं।
1: जी
0: हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा से जी,
0: क्या नाम है?
2: शोराम।
0: अच्छा शिवराम जी, क्या सवाल है आपका?
2: सवाल सर जी ये है जी, अब की बार ईंख लगा रखी है जी थोड़ी सी गन्ना, वो
0: कितना लगा रखा है?
2: तो एक कनाल में लगाया जी, शुरुआत करी है। पिछली
0: चलो बहुत अच्छी बात है।
2: बार लगाया था जी उसमें कीड़ा हो गया था जी ऊपर तने में,
1: जी
2: उस कीड़े का प्रकोप नहीं ज्यादा हो गया जी, वो काबू नहीं आया पिछले साल
1: जी जी जी बेसिकली
2: उस।
1: तने में ऊपर के हिस्से में जिसको हम अगोला बेधक या टॉप बोरर बोलते हैं, उसका प्रभाव पिछले 2-3 सालों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में अधिक देखने को मिल रहा है।
2: हाँ जी
1: और बार बार एक्चुअली क्या स्थितियां बन गई हैं कि हम एक ही प्रकार से हम उसका नियंत्रण करना चाहते हैं, वो भी केवल केमिकल से, रासायनिक से ही हम
2: जी
1: उसका नियंत्रण। मेरा आपसे आग्रह है कि उसके दोनों तीनों, क्योंकि अभी वर्तमान में आपने किस समय गन्ने की बुआई की थी?
2: ये बुआई करी थी जी, अब सरसों काट के। हाँ
1: सरसों काट के मतलब मार्च के आसपास लगभग।
2: जी
1: अभी मेरा आपसे आग्रह है, अभी पहली पीढ़ी चल रही है, पहली पीढ़ी पूर्ण होने वाली है, उसकी दूसरी पीढ़ी की अब जो शुरुआत होगी तितली से, तो जो
2: हाँ जी
1: पहली पीढ़ी की सुंडी अभी यदि आपके कल्लों के अंदर हो तो मेरा आपसे आग्रह है उन कल्लों को काट के खेत से बाहर निकाल दें।
2: अच्छा
1: उससे
2: जी अच्छा
1: उसका उससे वो आपके उत्पादन पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो समय है, इस समय गन्ने में रूट जोन बन गई है, जड़े बन गई है, और आपने मदर सूट हटाया है, तो वहां पर एक एपिकल पोर्शन पे एक एंजाइम इकट्ठा होता है जो पौधे की वृद्धि का बताता है, वो हट गया, तो उससे
2: अच्छा जी,
1: जमीन में से ही 3-4 कल्ले 5 कल्ले निकल के आएंगे। आप बिल्कुल पूरे मनोयोग के साथ में मन मजबूत करते हुए ऐसे प्रभावित कल्लों को काटकर खेत से बाहर निकाल के नष्ट कर दे। पहला तो सबसे अच्छा उसका
0: उपाय
1: नियंत्रण का उपाय
2: हाँ
1: मैकेनिकल
2: जी
1: यही है। दूसरा, इसके बाद हम केमिकल पे जाते हैं। अब क्योंकि आपका मार्च का बोया हुआ गन्ना है, उसमें टिलरिंग फेज अब मुझे लगता है अब जा शुरू हो गई होगी, वहां पे फुटाव की प्रवृत्ति उसमें आ गई होगी, कल्ले बनने शुरू हो गए होंगे,
2: हाँ जी, हो रहे हैं शुरुआत जी।
1: है ना। हाँ, तो उसमें आपके पास जब एक फिरोमोन ट्रैप और लगाने, जिसको हम किताबी भाषा में फिरोमोन ट्रैप बोलते हैं, तो एक प्लास्टिक का कीप आता है, उसमें नीचे पन्नी लगी होती है, उसके अंदर इस कीट की मादा की खुशबू होती है, ताकि नर अट्रैक्ट होके वहां पर आ जाते हैं। तो
2: हाँ
1: उससे
2: जी
1: हमें पता लगेगा कि मेरे खेत में दूसरी पीढ़ी कब आ रही है। जब आपके खेत में दूसरी पीढ़ी आने की संभावना शुरू हो जाए, उसी समय नीचे CTPR, क्लोरेंटा नीली प्रोल बोलते हैं, उसकी ड्रेंचिंग कर दे, धार बना के डालनी है। एक और छोटा सा निवेदन है कि जब उसको डालें, 400 लीटर पानी में 150 ml दवाई का घोल बनाकर, 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है।
2: हाँ जी
1: पानी की मात्रा विशेष तौर से, और पावर स्प्रेयर से स्प्रे ना करें, जो 500 लीटर के टैंकर हमने बना रखे हैं, हम पूरे पौधे को तर करते हैं, यदि आप उसका भी इस्तेमाल करते हैं, तो निवेदन है कि पौधे के तने के पास धार बनाकर कुंड कुंड में उस दवाई को डाला जाए। यदि फोलियर
2: अच्छा
1: स्प्रे
2: जी,
1: करेंगे तो उतना अच्छे परिणाम उसके नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं
2: नहीं
1: दिक्कत
2: मिलेगा जी
1: उसके लिए।
2: उससे जी। ठीक है जी,
1: जी, तो ये महत्वपूर्ण सावधानी आप रखेंगे, और निश्चित तौर पर आपको आगे उससे कठिनाई कम से कम होगी।
2: अच्छा जी, ठीक
1: जी
0: है शिवराम जी, फोन
2: है, धन्यवाद
0: करने
2: जी।
0: के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि संतुलित उर्वरकों के जो हमारे फसलों में डाले जाते हैं या गन्ने में जो लोग डालते हैं, तो
1: जी
0: उसका गुणवत्ता की भी बात आपने करी है,
1: जी जी
0: लेकिन इसका जो हमारे उत्पादन पर
1: जी
0: क्या प्रभाव पड़ता है?
1: उत्पादन सीधे सीधे प्रभावित होता है, गुणवत्ता की दृष्टि से भी प्रभावित होता है, और क्वांटिटी की दृष्टि से भी प्रभावित होता है। हमें उतना अच्छा उत्पादन दोनों ही श्रेणी में नहीं मिल पाता। और दूसरा, हमारी जमीन का असंतुलित उर्वरकों के प्रयोग से पीएच में भी भारी बदलाव आ रहा है, क्योंकि हम केवल उर्वरक या संतुलित उर्वरकों का मतलब रासायनिक उर्वरकों से समझते हैं।
0: जी
1: इसके साथ मैं अभी आपसे जोड़ेंगे आगे।

0: जी
1: तो बतिया जी, क्या सवाल है आज का?
0: राम साहब, सारी पंचायत को राम राम। और
2: राम
0: सवाल है, जो
2: राम जी, राम राम।
1: राम राम जी।
0: गन्ना अब पिछेटा बोया जा रहा है,
1: जी
0: उसकी उत्पादन क्षमता और उसकी उर्वरक, उसमें क्या क्या चीज डालें जिससे उसमें सही दाम फसल के मिले, और क्या उसमें मूंग बो सकते हैं फिर फसली खेती के रूप में?
2: जी बहुत अच्छा प्रश्न है। एक तो उसमें उर्वरक प्रबंधन हम क्या करें, और दूसरा उसमें सह फसली के रूप में मूंग की बुआई कर सकते हैं क्या? जी, दोनों ही चीजें आवश्यक है, क्योंकि यदि आप संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आप पछेती देर से बुआई में भी गन्ने का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पहला तो मेरा निवेदन ये है कि हम ज़्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डाई या डीएपी से बुआई करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। मेरा आग्रह है, यदि आप डीएपी से बुआई कर रहे हैं, डाई से बुआई कर रहे हैं, तो उसके साथ पोटाश का इस्तेमाल अवश्य करें। यदि अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो जब आप उसमें गन्ने में मिट्टी चढ़ाएंगे, उस समय आप एक बार पोटाश का इस्तेमाल 8 kg प्रति बीघे या 40 kg प्रति एकड़ की दर से अवश्य इस्तेमाल करें। उसी के साथ साथ 2 kg प्रति बीघे की दर से माइक्रो न्यूट्रेंट का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे वेस्टर्न यूपी की अधिकतर भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा दो आग्रह आपसे और है। एक, आप यदि बेहद अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो कुछ जैविक फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर की तरफ भी हमें चलना होगा। आप इसके साथ साथ एनपीके कंसोर्टिया और जो हमारे सीवीड एक्सट्रैक्ट आते हैं जैसे सागरिका, ऐसे तत्वों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक पैकेज बना के इस्तेमाल करेंगे तो आपका उत्पादन बेहद अच्छा होगा। और दूसरा, अभी आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि क्या मूंग की खेती हम इसके साथ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें दो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। यदि हम सह फसली करते हैं, तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं मानता हूँ, यदि आप दूरी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आप दूरी पर गन्ना लगाते हैं, तो सह फसली में हमारी गन्ने की फसल पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हम दूरी भी ना बढ़ाएं और हम उसमें सह फसली भी करें, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव, यदि दलहनी फसलों को छोड़ दें तो अन्य फसलें उस पर प्रभाव डाल के जाती है। इसलिए यदि आपने साधारण बोया है तो उसमें मूंग आप लगा सकते हैं, और उससे भी अच्छा विकल्प उसका होगा कि आप मूंग लगाएं और केवल फलियों की तुड़ाई करके खेत से बाहर निकालें, और जो मूंग के संपूर्ण पौधा है वो बायोमास पूरा का पूरा जमीन में दोबारा से जुताई कर दें, तो हरी खाद का भी हमारा काम हो जाएगा और आपको मूंग का एडिशनल इनकम आपको प्राप्त होगी, और बेहद अच्छी शुरुआत ही आपकी होगी।
1: जी त्यवतिया जी, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया, और फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दूसरे किसान भाई का फ़ोन लेते हैं। हेलो,
0: नमस्कार जी,
1: हाँ नमस्कार जी
0: मैं सतीश कुमार, डिस्ट्रिक्ट भिवानी।
1: जी।
0: सर, फसल चक्र कितने दिन का रखना चाहिए इसमें? पंद्रह
1: जी, आप अपना थोड़ा रेडियो सेट दूर कर लो या धीमा कर लो।
0: है सर मेरे वाला तो।
2: अच्छा
1: जी बिल्कुल, इनका सवाल
2: जी
1: वाजिब
2: जी
1: है डॉक्टर साहब, कि फसल चक्र का भी बहुत बड़ा महत्व होता है
2: बिल्कुल
1: उत्पादन
2: बिल्कुल
1: में।
2: जी। और उसको हम किस प्रकार अपने इसमें सम्मिलित करें, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप जब फसल चक्र की बात करते हैं तो ऐसा फसल चक्र बनाएं जिसमें हमारी दलहनी तिलहनी फसलों का भी समावेश हो। जो भी आप गेहूं धान, हम गन्ने के बाद यदि फसल चक्र में बात करते हैं हमारे किसान भाई साधारण तौर पर, तो वो गन्ना छोड़ते हैं तो गेहूं और धान पर चले जाते हैं, फिर गेहूं धान लगाने के बाद उसके बाद पुनः गन्ने पर आ जाते हैं। मेरा आग्रह आपसे है कि यदि आप गेहूं के बाद, ये सॉरी गन्ने के बाद अन्य फसल चक्र में आप दलहनी फसलों का और तिलहनी फसलों का समावेश करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप एक 3 वर्षीय या 4 वर्षीय फसल चक्र बनाए जिसमें आपकी दलहनी फसलें भी सम्मिलित हो, तिलहनी फसलें भी सम्मिलित हो, धान्य फसलें फसली पर जाते हैं। जब हम फसल चक्र नहीं अपना पा रहे हैं, उस दृष्टि से फसल चक्र नहीं अपना पा रहे हैं जिस दृष्टि से अपनाना चाहिए, इसीलिए हमारे यहाँ पर अब सुझाव दिया जाता है कि सह फसली करें, थोड़ा चौड़ी दूरी पर गन्ना लगाएं, उसके अंदर सह फसली करें, ताकि उसका बायोमास एक सह फसली के रूप में फसल चक्र की दृष्टि से ही वो हमारी जमीन को इनरिच करता रहे। इसीलिए गवर्नमेंट का भी और एक अर्जित अतिरिक्त इनकम के लिए किसानों को सुझाव दिया जाता है कि आप उसमें अन्य फसलें लगा लें। यदि आप अपने स्तर पे फसल चक्र बना रहे हैं तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप उसमें दलहनी फसलें और तिलहनी फसलें जोड़ते हुए ही उसका बनाने का प्रयास करें।
1: तो डॉक्टर साहब, वैसे जो फसल चक्र है
2: जी
1: उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है?
2: बहुत अच्छा, मैं उसी चीज को बता रहा हूं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही ये है कि जब जमीन में हम लगातार एक ही फसल ले रहे हैं तो उसकी जो जमीन से अपटेक करने की नेचर है, पोषक तत्वों को खींचने की नेचर है, वो एक प्रकार की बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम गन्ना उगाते हैं तो गन्ना यदि हमारी जमीन से सल्फर ज्यादा खींचता है या आयरन ज्यादा खींचता है, जब भी हम उसको गन्ना लगाएंगे तो वो उसको ज्यादा ही जमीन से अपटेक करेगा।
1: जी
2: यदि हम उसमें फसल बदल दी, हमने अब की बार उड़द और मूंग उसके फसल चक्र में ले आए, तो ये दलहन वाली फसलें ऐसी है जिनकी जड़ों में नोड्यूल्स बनते हैं और जो नाइट्रोजन, वातावरणीय नाइट्रोजन को जमीन में फिक्स करने का काम करते हैं, ताकि वो जमीन में जब उनका पौधा भी अपना शरीर पूरा कर लेगा उसके बाद भी वे नोड्यूल जमीन के अंदर रहेंगे, जब वो रिलीज होगी धीरे धीरे डिकम्पोज होकर, तो जो अगली फसल उसकी लगाई जाएगी तो उसका उसको बेहद अच्छा लाभ मिलेगा, ताकि वो न्यूट्रेंट की अवेलेबिलिटी वहां पर पौधे को होती रहे। इसीलिए फसल चक्र, कई सिद्धांत होते हैं, रूट की डेप्थ के आधार पर भी हम फसल चक्र को आधार मानते हैं कि कुछ कम गहरी जड़े वाली हम फसल लें, कुछ उथली जड़ों वाली लें, कुछ दलहनी फसल की लें, कुछ तिलहनी, ताकि सभी प्रकार की फसलों का समावेश उसमें करते हुए वास्तविक फसल चक्र का लाभ तभी मिल पाता है किसान भाइयों को।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने विस्तार से बताया और सतीश कुमार जी को इसका जवाब मिल गया होगा। फ़ोन करने के लिए सतीश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सतीश कुमार जी के बाद एक किसान भाई और लाइन पे हैं, डॉक्टर साहब इनका भी सवाल ले लेते
2: जी
1: हैं।
2: जी जी
1: हेलो।
3: नमस्कार सर।
1: हाँ नमस्कार
2: नमस्कार,
1: जी।
3: मोहर सिंह बोल रहा हूँ सर। बोलेंगे सर, सर मूंग के बारे में बता रहे थे आप डॉक्टर साहब अभी तेवत्या जी को, तो उसकी पैदावार भी अच्छी मिले और खाद के लिए पौधा भी अच्छा मिले, तो क्या करें उसके बारे में?
2: अभी सबसे पहला तो आग्रह ये है, जब भी दलहनी फसल लगाएं, क्योंकि मानसून सीजन, बरसात का सीजन आता है, तो हम सुझाव देते हैं बेड प्लांटिंग करें। यदि आप
3: जी
2: बेड प्लांटिंग करते हैं, बेड के ऊपर करते हैं, तो दलहनी फसल में

0: हम गन्ने को सिंचाई
1: जी
0: करते हैं, और उस समय यदि इस पे पानी लगता है तो ये फ्लावर ड्रॉपिंग करके फिर दोबारा से वेजिटेटिव ग्रोथ पे आ जाती है। तो एक तो पहली सावधानी हमें रखनी है कि जब हम किसी भी दलहनी फसल की बुआई करें, इसीलिए मैं सबसे पहले रिकमेंड करता हूं, अभी आपने जो हमारे पहले किसान भाई थे मैंने उन्हें भी यही सुझाव दिया है
1: हाँ,
0: कि
1: उनको बताइए, आपने पे बच्चे जी बात कर रहे हैं आपसे
0: जी
1: जी
0: जी जी कि चौड़ी दूरी पर लगाएं,
1: जी
0: ताकि वो जो ट्रेंच हमने बनाई उसका जो प्लेटफार्म है ऊपर का, उस पर हम कोई भी सह फसली लेंगे वो सब कामयाब होगी।
1: डॉक्टर
0: लेकिन
1: साहब, मैंने अलग लगा रखी है मूंग, बिल्कुल गन्ना वन्ना कुछ नहीं है उसके साथ में, अलग है
0: जी
1: बिल्कुल।
0: बहुत बढ़िया,
1: तो उसके बारे में बता दो
0: लगा
1: आप, मूंग
0: चुके
1: से
0: हैं अभी
1: लगा रहे
0: आप,
1: हो जी?
0: बेसल में लगा
1: हाँ
0: चुके
1: वो
0: हैं
1: लगा
0: ना?
1: चुके हैं।
0: हाँ, बुआई कर चुके, अब उसमें अतिरिक्त किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप उसमें आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें, और मेन उसका होता है उसमें येलो लीफ डिजीज आता है, मतलब पीला पत्ते उसके हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए आप वेक्टर, उसको एक मक्खी फैलाती है, तो उसे बीच बीच में आप उसका ध्यान रखें, यदि एक दो पौधा कहीं नजर आता है तो तुरंत उस पर सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड इमीडा का आप इस्तेमाल करके उसको एक तो रोकने का प्रयास करें, और यदि प्रारंभिक अवस्था में ग्रोथ अच्छी लेना चाहते हैं तो एक स्प्रे एनपीके का 19-19-19 या 20-20-20 का आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी इनी
1: एनपीके कर दे, एनपीके। अच्छा
0: एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो नो डाउट वो इनिशियल ग्रोथ उसकी अच्छी हो जाएगी। बाकी क्योंकि दलहनी फसलें हैं वो खुद ही नाइट्रोजन को एटमोसफेयर से अपने एकत्रित करने की पावर उसमें रखती है।
1: तो
0: ठीक है,
1: यूरिया बिल्कुल ना डाले ना, यूरिया बिल्कुल ना डाले।
0: आवश्यकता नहीं होती वो, क्योंकि केवल इनिशियल स्टेज में बुआई के समय या पहली इरिगेशन के समय ही उसकी ग्रोथ को इनहेंस करने के लिए आवश्यकता होती है। वो आप बुआई कर चुके, आपकी फसल अब बढ़वार पर है, तो इस समय आप यदि उस पर फोलियर स्प्रे कर देंगे तो वो मोर देन सफिशियंट होगा।
1: चलो ठीक है डॉक्टर
0: ठीक है
1: जी,
0: मोहर सिंह
1: नमस्कार
0: जी,
1: जी,
0: फ़ोन करने के
1: नमस्कार।
0: लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, ये तो काफ़ी विस्तार से बात रही जी
1: आपकी मूंग के बारे में,
0: जी जी
1: लेकिन हम पुनः गन्ने पे आते हैं। अगर
0: जी
1: गन्ने की फसल में, और वो भी संतुलित उर्वरकों की हम बात कर रहे हैं,
0: जी जी जी
1: तो अगर इसका हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें
0: जी जी
1: तो आप वैज्ञानिक लोग क्या सलाह देते हैं?
0: बहुत बढ़िया। अब मैं इसी चीज़ को कंक्लूड करते हुए कुछ वैज्ञानिक तथ्य बताना चाहूँगा कि किन
1: जी
0: किन चीज़ों के आधार पर हम संतुलित उपाय करते हैं। पहला, जो मैं भी पहले भी बता रहा था, कि सबसे पहले तो मृदा परीक्षण कराएं, सोयल टेस्टिंग में वास्तविक खेत के पोषक तत्वों की आवश्यकता क्या है उसको हम प्रयोग करेंगे। दूसरा, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करें, मतलब रासायनिक खाद के साथ में जैविक खादें और हरी खाद का भी इस्तेमाल किया जाए,
1: जी
0: केवल रासायनिक खादों पर ही आश्रित ना रहें। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरा, उर्वरक देने का समय जो आप सेलेक्ट करें वो सही समय आप चुनें, सही विधि चुनें, क्योंकि विधि यदि आपने अच्छी नहीं चुनी या विधि गलत तरीके से आपने, जैसे अभी तेवतिया जी थे तो हम उसमें डिस्कस हो रहा था कि ब्रॉडकास्टिंग करें या लाइन में डालें, तो बेस्ट होता है कि आप लाइन में डालें, ब्रॉडकास्टिंग से उसको बचें।
1: धनी
0: और
1: कहने का मतलब डॉक्टर साहब, पहले हम ज़्यादातर जिक्र करते थे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट
0: जी
1: की,
0: जी जी
1: और
0: बिल्कुल,
1: अब हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट
0: न्यूट्रेंट मैनेजमेंट
1: मैनेजमेंट
0: पे,
1: की।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। यही वास्तविकता है कि हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रेंट मैनेजमेंट में रासायनिक, जैविक और आपका हरी खाद, जो जीवाश्म कार्बन बढ़ाने वाली चीजें हैं, उनको सबको सम्मिलित करके इसमें लेकर चलना होगा
1: जी
0: हमें। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, कुछ जैविक उर्वरकों का भी विशेष ध्यान है, विशेष योगदान रहता है, जैसे राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, पीएसबी है, आप उनका प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें आपको उसका लाभ मिलेगा। और यदि मैं गन्ने की बात करूं, गन्ने की फसल में यदि विशेष प्रभाव की यदि हम बात करें, यदि हम संतुलित एनपीके से गन्ने में क्या प्रभाव मिलेगा, आपको गन्ने की लंबाई अच्छी मिलेगी, मोटाई अच्छी मिलेगी, संख्या अच्छी मिलेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात है वजन के साथ साथ रिकवरी अच्छी मिलेगी यदि आपने बैलेंस फर्टिलाइजर, और वो भी तीनों विधि से दिया। आप अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने सिस्टम में देखेंगे कुछ किसान भाई 100 क्विंटल से ज्यादा का उत्पादन प्राप्त करते हैं 1 बीघा में, तो वो संतुलित उर्वरकों का ही प्रयोग कर रहे हैं, जैविक और रासायनिक और आपके हरी खाद सबको मिलाकर।
1: जी बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर संतुलित उर्वरक प्रबंधन करते हैं तो आपके उत्पादन लागत भी कम होगी। तो
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल
1: डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए और किसानों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
2: श्रोता, हमारा फोन इन कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम था, और इसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड।
3: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खा।

0: दे। IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद। IPL की किसान मित्र जैविक खाद।
1: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।
2: तो श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम, राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्वागत है आपका गजल और कव्वाली के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का आगाज करते हैं पंकज उदास साहब की आवाज़ में इस गजल के संग।

0: इसी के साथ गजल के इस कार्यक्रम से आपसे इजाजत चाहूंगी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने वजन और माप से जुड़े लाइसेंस को आजीवन वैध करने का निर्णय लिया। आबकारी नीति मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सिसोदिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। न्यायालय ने एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का फैसला किया। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या 3 करोड़ के पार। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी। दिल्ली ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने वजन और माप से जुड़े निर्माताओं, डीलर्स और रिपेयरर्स के लिए लाइसेंस की वैधता अब आजीवन कर दी है, जिससे बार बार नवीनीकरण की जरूरत खत्म हो जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह एक बहुत बड़ा सुधार है जो माप तौल के नियमों को आसान और कारोबार के अनुकूल बनाएगा। उन्होंने बताया कि यह सुधार राजधानी की विनियमन अभ्यास 2.0 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न विभागों में नियमों को सरल बनाना और अनुपालन का बोझ कम करना है। श्री सिरसा ने बताया कि इस सुधार के अंतर्गत दिल्ली लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 में बदलाव किया जा रहा है, जिसमें लाइसेंस देने से पहले भौतिक स्थल निरीक्षण की जरूरत खत्म कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अब लाइसेंस स्व घोषणा के आधार पर जारी किए जाएंगे। श्री सिरसा ने कहा कि एक बार निर्धारित फीस देकर लिया गया लाइसेंस तब तक वैध रहेगा जब तक उसे नियंत्रक या अधिकृत अधिकारी द्वारा रद्द या निलंबित नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि सरकार अनावश्यक प्रक्रियाओं को हटाकर और भरोसे पर आधारित सिस्टम लाकर जमीनी स्तर पे कारोबारियों को राहत दे रही है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि वो आबकारी नीति मामले में बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की याचिका में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक की ओर से पेश होने के लिए वरिष्ठ वकीलों को सहायक वकील एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त करेगा। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायकों ने न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की अदालत में सुनवाई का बहिष्कार किया। उनका कहना था कि न्यायाधीश को मामले से अलग हो जाना चाहिए क्योंकि उन्हें हितों के टकराव और पक्षपात की आशंका है, लेकिन न्यायाधीश ने स्वयं को अलग करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति शर्मा ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई 8 मई तक के लिए टाल दी है। उन्होंने कहा कि पहले इन नेताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील नियुक्त किया जाएगा, उसके बाद ही आगे की सुनवाई होगी। इससे पहले केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक ने न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि वे ना तो खुद अदालत में पेश होंगे और ना ही कोई वकील भेजेंगे। इसका कारण यह था कि न्यायाधीश ने पिछले महीने उनकी स्वयं को मामले से अलग करने की मांग को खारिज कर दिया था। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया था कि न्यायाधीश के बच्चे ऐसे वकील हैं जिन्हें केंद्र सरकार की सूची में शामिल किया गया है और उन्हें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए काम

0: मिलता है, जिस मामले में सीबीआई की ओर से पेश हो रहे हैं। न्यायाधीश ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि केवल किसी पक्ष के शक के आधार पर न्यायाधीश खुद को मामले से अलग नहीं कर सकते। एमिकस क्यूरी ये व्यक्ति या संस्था होती है जो मामले का पक्षकार नहीं होती, लेकिन अदालत की मदद के लिए जानकारी या विशेषज्ञ राय देती है। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: भाजपा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और राजेंद्र गुप्ता ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कथित तौर पर राज्यतंत्र के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। मुलाकात के बाद श्री राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि वो हाल ही में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसदों को निशाना बनाने के लिए राज्यतंत्र का इस्तेमाल कर रही है।
2: मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पोल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। जब तक हम आपके साथ थे, हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे, और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा, हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए।
1: दिल्ली नगर निगम की उप महापौर मोनिका पंत ने आज एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कालकाजी वार्ड में नागरिक सुविधाओं की समीक्षा और समस्याओं का समाधान करने के लिए निरीक्षण किया। श्रीमती पंत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अग्रवाल धर्मशाला रोड के किनारे अवैध अतिक्रमण को मौके पर ही हटा दिया गया। उन्होंने अनधिकृत स्ट्रीट वेंडिंग और सार्वजनिक स्थानों को प्रभावित करने वाली अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान श्रीमती पंत ने अतिक्रमण को और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करने और किसी भी चूक के लिए जवाबदेही तय करने की बात कही। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी ने आज कहा कि दक्षिण दिल्ली के अनेक इलाकों में 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत भूमिहीनों को मिली जमीन पर बनी कॉलोनियों को नियमित किया जाए। श्री बिधोड़ी ने इस संबंध में दिल्ली के उद्योग और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से भेंट की। बैठक के दौरान श्री बिधोड़ी ने दिल्ली के जौनपुर में सिंगापुर की मदद से बनने वाली वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू करने का अनुरोध किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने बताया है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के संपूर्ण खंड के परिचालित होने के बाद नमो भारत ट्रेन ने 3 करोड़ यात्रा का आंकड़ा पार कर लिया है। एनसीआरटीसी ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में अपनी उत्कृष्ट यात्रा सेवा से नमो भारत ट्रेन ने यात्रियों के विश्वास को लगातार जीता है, जो यात्री संख्या में भारी वृद्धि के रूप में साफ दिखाई पड़ता है। एनसीआरटीसी ने बताया कि तेज गति के साथ साथ नमो भारत में यात्रा के अनुभव को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 1,52,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसमें किसानों के लिए कई बड़े फैसले शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने कपास उत्पादकता मिशन कपास क्रांति को स्वीकृति दी है। इसके लिए 5,650 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।
3: 5,659 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसके 3 कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट रिसर्च, दूसरा प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना और तीसरा न्यू एज फाइबर्स के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि गन्ना सीजन वर्ष 2026-27 के लिए उचित और लाभकारी मूल्य को भी मंजूरी दी गई है। इससे करीब 32 लाख किसानों को फायदा होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
4: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल पीएचडी थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की

0: जीत के उपलक्ष्य में आज सीआर पार्क स्थित मां काली मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने इस जीत को भारतीय राजनीति का एक निर्णायक मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि ये जीत इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश की जनता का विश्वास विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति में ही है। श्रीमती गुप्ता ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन राजनीतिक दलों ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन का विरोध किया था, बंगाल की माताओं बहनों ने उन्हें अपने वोट की ताकत से हराया है।
1: सही मायने में यह मानती हूँ कि जिस जिस नेता ने जिस जिस पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया, आज उनको मुंह की खाने मिली, चाहे वो डीएमके के स्टालिन हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, एक एक व्यक्ति जिसने नारी शक्ति का अपमान किया, आज उसको जवाब देना भारी पड़ रहा है। ये जीत महिलाओं की जीत है, माँ काली के आशीर्वाद से बंगाल की जीत है, देश की जीत है, देश के विकास की जीत है, और इस सब के कारण से विकसित भारत का रास्ता प्रशस्त हो रहा है।
0: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि इस जीत से बंगाल की विरासत और संस्कृति को आगे ले जाया जाएगा।
2: पूरे भारत के विकास में जो हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो राष्ट्र नायक के रूप में लगातार देश में प्रधान सेवक के रूप में जिस रूप से काम कर रहे हैं और विकास के साथ साथ हमारी विरासत और संस्कृति को भी संजोते हुए आगे लेके जा रहे हैं, और मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति को, पश्चिम बंगाल की विरासत को किसी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में।
0: चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक झालमुड़ी कार्यक्रम के माध्यम से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की विजय का उत्सव मनाया। इस अवसर पर श्री खंडेलवाल ने कहा कि झालमुड़ी अब केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की विजय का प्रतीक बन चुकी है। श्री खंडेलवाल ने बताया कि यह जीत केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि जन भावनाओं के सम्मान और लोकल के लिए वोकल के संकल्प की विजय है।
3: पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व विजय प्राप्त हुई है, और इस विजय में हम सबका ऐसा मानना है कि झालमुड़ी का अपना एक विशेष महत्व है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकल उत्पादों को बहुत प्रमोट करते हैं। जब वो बंगाल में प्रचार कर रहे थे तो उन्हें झालमुड़ी की दुकान दिखाई दी, और वहां जाकर के उन्होंने स्वाभाविक रूप से एक बहुत छोटे से व्यक्ति से झालमुड़ी मांगी, और ममता बनर्जी ने इस झालमुड़ी का उपहास किया, और आज इसी झालमुड़ी ने ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल कर दिया।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर उत्तराखंड से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी और कार्य आधारित धोखाधड़ी में शामिल थे। उन्होंने कहा कि वे साइबर ठगों के लिए फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराने और वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में शामिल थे। आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आगे की जांच जारी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आज नई दिल्ली में मातृत्व और शिशु देखभाल संबंधी कानूनों पर एक परामर्श बैठक का आयोजन किया। एक रिपोर्ट।
4: बैठक की अध्यक्षता आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने की। आयोग ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस परामर्श बैठक का उद्देश्य मातृत्व अधिकारों का समर्थन करने और सुरक्षित समावेशी तथा उत्तरदायी शिशु देखभाल से संबंधित कानूनी और नीतिगत ढांचों को मजबूत करने के लिए सिफारिशें तैयार करना है। इसके साथ ही बैठक में उभरती चुनौतियों का समाधान करने और महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण उपायों पर भी चर्चा की गई। अनुपम की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के विवेक विहार में हुई अग्नि दुर्घटना के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस दुखद घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने भलसवा डेयरी के मुकुंदपुर क्षेत्र में एक खुले नाले में गिरने से हुई बच्ची की मौत पर शोक व्यक्त किया है। इस घटना को अत्यंत दुखद और चिंताजनक बताते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ऐसी लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने अनुबंध पर रखे जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने छठे ओवर में दो विकेट पर 36

30 रन बना लिए हैं। दिल्ली और चेन्नई ने अब तक प्रतियोगिता में 9-9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें दोनों टीमों ने 4-4 मुकाबले जीते हैं, जबकि 5-5 मुकाबलों में दोनों को हार का सामना करना पड़ा है। 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी प्रतियोगिता नई दिल्ली की डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में खेली जा रही है। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के महिला वर्ग में कल राजस्थान की अंजलि शेखावत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके अलावा हरियाणा की कनक ने 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर महिला वर्ग और 10 मीटर एयर पिस्टल यूथ विमेन्स स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। राजधानी में आज दिन के समय धूप के साथ धीमी हवा चली। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है और सुबह तथा दोपहर के समय हल्की बारिश होने की भी आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने वजन और माप से जुड़े लाइसेंस को आजीवन वैध करने का निर्णय लिया। आबकारी नीति मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सिसोदिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। न्यायालय ने एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का फैसला लिया। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या 3 करोड़ के पार। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हेलो सलाम नमस्ते, स्वागत है आपका आपके फेवरेट फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत मालिका में। आज के गीत मालिका कार्यक्रम की इस रोलर कोस्टर राइड में हम करेंगे कुछ मजेदार सी बातें बातें और साथ ही याद करेंगे फिल्मी दुनिया के उन दो नायाब सितारों को जो आज ही के दिन हमारे बीच से विदा हो गए, लेकिन उनका संगीत आज भी हर संगीत प्रेमी के दिल में धड़कन बनकर धड़कता है। तो फिर देर किस बात की, बांध लीजिए अपनी कुर्सी की पेटी और सवार हो जाइए इस रोलर कोस्टर राइड में मेरे यानी आपकी अपनी दीप्ति पाठक निधीश के संग। शुरू करें।

हाँ तो देखिए ना, वादे के मुताबिक हाजिर है हम आपके रेडियो और मोबाइल सेट्स पर। और दोस्तों, पता नहीं क्यों बस अभी अभी मेरे दिमाग में ना एक शेर की पंक्तियाँ, लाइंस आ गई, आपको भी सुनवाऊंगी। कि किसी ने क्या खूब लिखा है कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौना माशुका रुतबा और खुदा। इसी के साथ मुझे दो लाइनें और याद आईं कि ये जवानी है दीवानी, इस फिल्म में जब बनी कहता है ना कि मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। तब उसके लहजे में, आंखों में, जज्बे में एक जुनून होता है कुछ करने का, सबसे अलग, सबसे जुदा। लेकिन लेटर इन द सेम मूवी जब बनी को ये रियलाइज होता है कि एम्बिशन अलोन कैन नॉट सस्टेन योर लाइफ, जिंदगी में यू ऑल्सो रिक्वायर कंपेनियनशिप्स, यू ऑल्सो रिक्वायर फैमिली, फ्रेंडशिप्स, एंड यस, यू रिक्वायर सम क्वालिटी टाइम विद लव्ड वंस। तो देखिए ना, एकदम से कैसे फिल्म का सीन ही चेंज हो जाता है। आइए सुनवाते हैं आपको इसी फिल्म से ये गीत, और उसके बाद करेंगे हम और भी बहुत सारी मजेदार बातें।

अच्छा, अगर आपको कोई ये बताए कि फिल्म सीता और गीता के लिए एक्ट्रेस हेमा मालिनी पहली चॉइस नहीं थी, तो आपके दिमाग में सबसे पहले उनकी जगह कौन लेगा? सोचिए जरा। हम बताते हैं आपको पूरी सच्चाई। 1972 में आई फिल्म सीता और गीता को डायरेक्टर रमेश सिप्पी सबसे पहले एक्ट्रेस मुमताज के साथ बनाना चाहते थे। वो मुमताज के पास इस मूवी का ऑफर लेकर गए भी, लेकिन कुछ रीजंस से वो ये फिल्म नहीं कर पाई और फिर ये फिल्म आ गिरी हेमा मालिनी जी की झोली में। सीता और गीता में उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा तो खैर मनवाया ही, साथ ही इस फिल्म के लिए पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किया। और ये फिल्म लेखक जोड़ी सलीम और जावेद की शुरुआती सुपरहिट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की कामयाबी के साथ ही दोस्तों, इस जोड़ी का इंडस्ट्री में सिक्का जम गया और फिर इस जोड़ी ने हमें दी शोले जैसी फिल्में।

और देखिए ना साथियों, हम लोग चलते चलते आ पहुंचे हैं एक ऐसे लिरिसिस्ट के पास जिनका नाम शायद हम में से कुछ जानते हो और हो सकता है कुछ ना भी जानते हो, लेकिन इनके गाने तो लगभग हम सभी ने खूब सुने होंगे। इनके गाने हिंट दूं आपको, जैसे आज दिन चढ़िया, हायो मेरिया दादिया रब्बा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, मैं बात कर रही हूँ शिव कुमार बटालवी साहब की। तो चलिए आज सुनवाते हैं आपको इन्हीं के लिखे एक ऐसे ही गाने की खूबसूरत सी कहानी। तो हुआ यूं कि शिव कुमार बटालवी साहब पहुंचे हिमालय के बैजनाथ मेले में और वहां उन्हें मिली एक बहुत प्यारी सी लड़की, मैना। जैसे पहली ही नजर में वो अपना दिल हार बैठे, एकदम दीवाने से हो गए।

12 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 10 दिनों तक तो उन दोनों की नजरें मिलती रहीं, फूल खिलते रहे, लेकिन 11वें दिन जब मैना आई ही नहीं तो उन्हें ढूंढते ढूंढते शिव कुमार बटालवी साहब ने एक गाना लिखा, या यूं कह सकते हैं कि एक इश्तिहार लिखा, एडवर्टीजमेंट। ये गाना उन्होंने लिखा तो मैना को ढूंढते हुए था, क्योंकि मैना कहीं गुम हो गई थी। लेकिन ये गाना सुनने के बाद हम सभी के दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए छा गया। सुनिए वही गाना जो उन्होंने लिखा था मैना के लिए।

0: अश्रोताओं, अब बात मसीह करे आजम यानी महान संगीतकार नौशाद साहब की, लेकिन सबसे पहले उनका ये गीत।
1: लागा गोरी गुजरिया से

करजवामा खटक होइबे करी नैन लड़ जाई है नैन लड़ जाई है तो मनवामा कसक होइबे करी थई थई थई थई थई झाक दिनक दिन थाक तिनक तिन धाक दिनक दिन थाक तिनक तिन धा आंख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

फिल्म गंगा जमुना में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब को साथियों के साथ। और दोस्तों, फिल्मी जगत में जब भी संगीत निर्देशन की बात होगी ना, तो नौशाद साहब का नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्हें मसीकरे आजम यानी कि महान संगीतकार, बॉलीवुड के तानसेन और द मुगले आजम ऑफ म्यूजिक के रूप में भी सम्मानित किया जाता रहा है। और इसका खास कारण ये है कि उन्होंने मुगले आजम, बैजू बावरा और मदर इंडिया जैसी फिल्मों में शास्त्रीय रागों पर आधारित अमर संगीत दिया।

श्रोताओं, लखनऊ में जन्मे नौशाद साहब ने अपने देश के अलग अलग इलाकों की धुनों और शास्त्रीय संगीत को अपनी सरगम का साथी बनाया। फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार नौशाद साहब को 1981 में दादा साहब फाल्के और फिर 1992 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। फिल्म ताजमहल में उन्होंने अपने जीवन का आखिरी संगीत दिया। 5 मई 2006 को संगीत की दुनिया का ये ध्रुव तारा हमें आखिरी सलाम कह गया, लेकिन उनका संगीत आज भी हम सभी के दिलों में सदा के लिए अमर है।

साथी श्रोताओं, आज हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं फिल्म निर्देशक, स्टोरी राइटर, डायलॉग राइटर और गीतकार गोविंद म्यूनिस साहब को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। 1929 में उन्नाव जिले के पासाखेड़ा गांव में जन्मे गोविंद म्यूनिस साहब की पढ़ाई कानपुर में हुई। 1953 में मुंबई, जो कि उस समय का बॉम्बे था, आने के बाद पहले सत्येन बोस साहब के असिस्टेंट के तौर पर और फिर डायलॉग राइटर, लिरिसिस्ट और स्क्रीन प्ले राइटर के तौर पर भी वे बोस साहब से जुड़े रहे। 1971 की फिल्म उपहार और राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की कुछ और फिल्मों के लिए भी उन्होंने डायलॉग लिखे, जिसके बाद उन्हें 1982 में नदिया के पार से जुड़ने का भी मौका मिला।

और श्रोताओं, अब हम बढ़ चले हैं अपने कार्यक्रम गीत मालिका की रोलर कोस्टर राइड के अंतिम पड़ाव की ओर। जाते जाते आपको सुनवा रही हूँ एवरग्रीन सिंगर शान की आवाज में ये एवरग्रीन सॉन्ग। फिर मिलूंगी आपसे बहुत जल्द यूं ही किसी संगीतमय मोड़ पर। तब तक के लिए अपनी साथी अपनी मितवा और आपकी अपनी दीप्ति को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से आयातित कपास पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी।
2: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
2: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित देश की पहली वाणिज्यिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले सुविधा और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा शामिल है।
2: 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से 2 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकेंड वाले का, और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
2: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं और ये जजेस बढ़ाए गए।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और कहा कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। उधर निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार और झूठ बताया है। दक्षिण कोलकाता के जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पूरी मतगणना आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार ही संपन्न हुई। मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने के आरोप का खंडन किया गया है और कहा गया है कि कैमरे पूरी मतगणना के दौरान चालू रहे हैं। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा कि चाहे वो इस्तीफा दें या न दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। एक रिपोर्ट।
3: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस खेमे में चर्चाएं जारी है, लेकिन विधायक दल की आधिकारिक बैठक के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने केरलम में 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट पर शानदार जीत हासिल की है। विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी सरकार गठन के लिए राज्यपाल से संपर्क करेगी। यूडीएफ सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक दिल्ली से पार्टी कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम स्मिथ एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कड़गम के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को नेता चुना है। एक रिपोर्ट।
4: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक

0: मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: पुदुचेरी में मनादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम की अध्यक्षता में आज नव निर्वाचित विधायकों की परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और पुदुचेरी में भाजपा चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, प्रदेश प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वयम को विधानसभा में पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
3: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा। देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी के अनुसंधान के क्षेत्र में 5 वर्षीय सहयोग के लिए एक समझौता किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चंद्र वर्मा ने कहा कि यह सहयोग भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.21 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा किया। इस यात्रा को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनईसी ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स ईजीआर को जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सोने की व्यापक खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाना है। इसके जरिए सोने की लिवाली और बिकवाली की प्रक्रिया को एक विनियमित तथा सुरक्षित आधार मिलेगा। ये सोना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त वॉल्ट में रखा जाता है और डिपॉजिटरी के जरिए डिजिटली सुरक्षित रहता है। भारत ने आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनी थी। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। मौसम विभाग ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में कल तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ

0: बताइए बताइए।
1: ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: आप यहाँ आए इसलिए

0: शादी का इरादा है,
1: शादी
0: का इरादा है,
1: शादी ना बाबा ना,
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाबा,
0: सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये

0: हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए. करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा.
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है. इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी. मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है.
0: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था, तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए. उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा. करीब 3,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा. सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड. ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा.
1: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं. शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है. कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया. भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है. पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है. केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है. उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना. रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है. इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल है. इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी. भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली में अपनी प्रमुख शोध पत्रिका संचार माध्यम का विशेष स्मृति अंक जारी किया. ये अंक भारत में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकाशित किया गया. नीति आयोग ने सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल का शुभारंभ किया है. इसका उद्देश्य वास्तविक समय में शासन को मजबूत करना, विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाना और योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाना है. पोर्टल का शुभारंभ नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर ने किया. IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया. संजू सैमसन ने नाबाद 87 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. कार्तिक शर्मा ने 41 रन का योगदान दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 155 रन बनाए थे. भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
2: This is Akashwani, the news read by R.S. Raghu. The Union Cabinet has approved the Mission for Cotton Productivity, Kapas Kranti, with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fibre, to factory, to fashion, to forage, and focuses on enhancing cotton productivity. The Union Cabinet has also approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0. Under the scheme, a 100% credit guarantee will be provided for MSMEs, while a 90% guarantee will be extended to non-MSMEs and the airline sector. The Union Cabinet has also approved 2 more semiconductor projects under the India Semiconductor Mission. These include the country's first commercial

गीत सुनहरे कार्यक्रम में आप लेंगे आनंद पुराने फिल्मी नगमों का, और अभी आपने सुना तू ही मेरी जिंदगी फिल्म से उसका टाइटल ट्रैक मोहम्मद रफी का स्वर था। अगला गीत आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, फिल्म है तीसरा कौन, आशा भोसले की आवाज में, संगीत आर डी बर्मन का है।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म तीन देवियां से, किशोर कुमार व अन्य साथियों की आवाजों में, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत एसडी बर्मन ने दिया था। अगला गीत पेश है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में फिल्म उपासना से।

चलिए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म शोले से दो बैक टू बैक गीत। ये पहला गीत जो आप सुनेंगे उसे गाया है और संगीत आर डी बर्मन का है।

किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में आपने सुना फिल्म शोले से ये गीत। संगीत आर डी बर्मन का था और बोल लिखे थे जी पी सिप्पे ने। दोस्ती पर ये गीत बहुत ही फेमस है, आप सुनते ही रहते हैं जब भी दोस्ती की बात आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म प्यार ही प्यार से मोहम्मद रफी का स्वर है, शंकर जयकिशन ने संगीत दिया है।

संगीत आर डी बर्मन का था। अब अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसमें आवाज़ है किशोर कुमार और आशा भोसले की। संगीत आर डी बर्मन का है, फिल्म खेल खेल में।

0: किशोर कुमार व अन्य साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे ये पैपी गीत फिल्म कर्ज से। ये फिल्म 1980 में आई थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था, बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। इसी गीत के साथ गीत सुनहरे पुराने फिल्मी नगमों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। फिलहाल रात्रि के 2 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
2: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी मिली है।
2: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा। करीब 3,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
1: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन SIS से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये आरोपी सार्वजनिक जगहों पर रायसिन नाम के खतरनाक जहर से लोगों को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की है। ये निवेश एरोस्पेस, रक्षा, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। ये घोषणा वाशिंगटन के पास मैरीलैंड के नेशनल हार्बर में आयोजित सेलेक्ट USA निवेश शिखर सम्मेलन में की गई। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि उस पर लगातार दूसरे दिन मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। ईरान ने इन घटनाओं में किसी भी भूमिका से सख्ती से इनकार किया है। ये घटनाएं ऐसे समय में हो रही हैं जब क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है और हॉर्मूज जल डमरू मध्य में समुद्री सुरक्षा को लेकर अमरीका का प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान जारी है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Union Cabinet has approved the Mission for Cotton Productivity, Kapas Kranti, with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fibre to factory to fashion to foreign, and focuses on enhancing cotton productivity. The Union Cabinet has also approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0. Under the scheme, a 100% credit guarantee will be provided for MSMEs, while a 90% guarantee will be extended to non-MSMEs and the airline sector. The Union Cabinet has also approved two more semiconductor projects under the India Semiconductor Mission. These include the country's first commercial mini micro LED display facility based on gallium nitride technology, along with a semiconductor packaging facility. Mr. Vaishnaw said the approved proposals will establish semiconductor manufacturing units in Gujarat with a cumulative investment of around 3,936 crore rupees. The Union Cabinet also approved a proposal to introduce the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in Parliament. Mr. Vaishnaw said the bill seeks to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 to increase the sanctioned strength of judges in the Supreme Court by 4, from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, also approved three multi-tracking railway projects with a total cost of 23,437 crore rupees. The CCEA has approved the development of a state-of-the-art ship repair facility at Vadinar, Gujarat,

यह आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 2:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बहार, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त कीर्ति। चलिए इस नॉन स्टॉप गीतों की फहरिस्त को आप तक पहुंचा रहे हैं, और शुरुआत करते हैं इस सफर की इस गीत के साथ।

लो पसीना पोछ लो। आंखों में शरारत है, होठों टिकायत है, बेचैन तबीयत है, बेताब सी हालत है, कुछ कहूँ इजाजत

0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर गजल और गीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इसमें आप सुनेंगे के एस गोपाला कृष्णन द्वारा बजाए बांसुरी पर राग अभेरी।

श्रोताओं, नाद ब्रह्म कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने के एस गोपाला कृष्णन द्वारा बजाए बांसुरी पर राग अभेरी सुना। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 मई 2026। सुबह के 4:53 और 45 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, आइए अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आप सुन सकते हैं भद्रासन और अश्वथासन के बारे में। 5:20 का वक्त होगा देशभक्ति गीत का।

5:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी, जबकि सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में, तो वहीं 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

6:10 पर आप, 6:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम वंदना, जबकि 6:45 का वक्त होगा कार्यक्रम रामचरित मानस का।

0: 5 बजने को है, आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
2: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति कल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनका स्वागत किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह की 9 मई को होने की संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और

मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस कथित बयान पर कि वे इस्तीफा नहीं देंगी, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इन टिप्पणियों को अराजक बताया और इस तरह के बयान देने में संयम बरतने का आग्रह किया। वहीं केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम टीवीके के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी पढ़ने लिखने और गणना क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 155 रन बनाए। संजू सैमसन ने नाबाद 87 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्तिक शर्मा ने 41 रन का योगदान दिया। आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। बहुत बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय प्रेग्नेंट लेडीज को कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन तक की भी नौबत आ जाती है। और आजकल तो देखते हैं कि सिजेरियन केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से यह निवेदन है कि वह गर्भावस्था के दौरान भी पौष्टिक आहार का सेवन तो करें ही, अच्छी नींद लें और साथ साथ कुछ योग अभ्यास भी जरूर करें। योग अभ्यास में जैसे प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ कुछ आप सिलेक्टिव आसन भी कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान आती है तो आप योग विशेषज्ञ के निर्देशन में योग अभ्यास को पहले अच्छी तरह से सीखें, फिर घर पर उसका अभ्यास करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के समय आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे भद्रासन। आइए जानते हैं कि भद्रासन किस प्रकार प्रेगनेंसी के समय किया जा सकता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ लें। श्वास लेते हुए एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक लेकर आएं। जितना समीप हो सके उतना समीप लाने का प्रयास करें। यदि आपकी जंघाएं जमीन से टच नहीं हो रही हैं, जमीन से नहीं लग पा रही हैं, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया आप रख सकते हैं। इस अवस्था में

10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास पर श्वास लेते रहें। इस अवस्था में आप समय को भी बढ़ा सकते हैं। यह आसन गर्भावस्था में बहुत ही लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से भी मुक्ति प्रदान करता है। इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं दोस्तों। यह आसन शरीर में दृढ़ता लाता है और मस्तिष्क को भी स्थिरता प्रदान करता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के समय आप भद्रासन किस प्रकार कर सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम आप यह अभ्यास सुबह शाम के समय दोहरा सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं।